कमांड, बेचारे उनको सप्लाई करते ही फुर्सत नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं है, एक के बाद दूसरा जीव, उसको उसका प्रारब्ध देखा, इसको कौन सा शरीर चाहिए है, मनुष्य का चाहिए तो मनुष्य का साचे में वो मिट्टी रॉ मेटेरियल, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना, इसको पांचों भूतों को मिलाकर एक जगह रखा है उन्होंने, फट से उसमें से निकाला, साचे में डाला, खड़ा कर दिया, ले घुस जा। वो जीव घुस गया। दूसरा कहता है, महाराज उसको तो मिल गया शरीर, मुझे भी दे दो। अब उन्होंने फिर मसाला देखा, अब देखा अब उसको, महाराज उसको जो शरीर दिया वो मुझे दो। बोले खबरदार, हैं क्यों उसको दिया, हमको क्यों नहीं दिया, तेरा प्रारब्ध में वो शरीर नहीं है, तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, कौन सा मिलेगा बोलो, कुत्ते का मिलेगा। फिर दूसरा सांचा लिया, कुत्ते का डाई, कुत्ते के साथ आकार का वो सांचा लिया, मेटेरियल वही है, मसाला वही है, खाली आकार का फर्क है, मसाला एक ही है भाई, मसाला वही, मसाला में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो कड़ी में डालो तो वही नमक है, दाल में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया है, सब्जी में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया, कड़ी में डालो वही नमक मिर्ची धनिया, अचार में डालो वही नमक मिर्ची धनिया, बोलो मसाला कोई दूसरा लाते हो क्या, नाम बदल जाता है, है? इसी तरह ब्रह्मा जी उसको फिर कुत्ते के वो आकार का सांचा ले आया, मसाला वही था, डाल दिया, फट खड़ा कर दिया, घुस जा इसमें जा। वो बेचारा घुस गया, मुझे वो शरीर दो। फिर तीसरा आ गया, मुझे शरीर दो। जैसे देखा इसका कौन प्रारब्ध, कौन सा शरीर के लिए अभी प्रारब्ध तैयार है, देखा गड़बड़ करना नहीं है। फिर देखो कितनी सावधानी, उसको ब्रह्मा को शिव जी के चरण दबाने का फुर्सत कहा बोलो, यदि एक घंटा भी शिव जी के चरण तेल लगाना और मासिल करना यदि चले गए ब्रह्मा जी, तो वहां तक कितने क्यों खड़े हो जाएंगे जीवात्मा, हो फिर तो हल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे, हाँ सड़क जाम हो जाएगी, तो वो न हो इसके लिए। अब दूसरी बात, विष्णु को कहां फुर्सत है, ब्रह्मा ने जैसा भी शरीर बनाकर बाहर फेंक दिया स्टेचू, जीवात्मा को उसमें घुसना पड़ा, घुसने के बाद फिर बाकी काम फिर विष्णु को संभालना है कि नहीं बोलो। अब विष्णु को बड़ी मुश्किल है, वो शरीर को लेकर वो खड़ा हो गया, ऐ करने लगा, फिर दूध तैयार करो बेचारा, वो दूध बनाने वाला कौन, ब्रह्मा तो बनाएगा नहीं दूध, विष्णु बनाएगा, उसको फुर्सत कहां, क्या मजा आ रहा है ना, पैसा वसूल, हमने उस दिन कहा था ना, देखो ये लीला है ईश्वर की, इसी तरह इनका चलता है। इसीलिए विष्णु को भी फुर्सत नहीं, ब्रह्मा को भी फुर्सत नहीं, पार्वती को भी फुर्सत नहीं, दो दो बच्चों का संभालना है, कम खेल नहीं है वो, कार्तिक और गणेश, उसके तो कार्तिक के तो 6 मुख हैं, ड्रेस सिलाना होगा तो भी बड़ा मुश्किल से, 6 मुख सड़ानन, और खाएगा भी 6 मुख से, 1 मुख से जितना खाएगा गणेश उसका 6 गुना वो खाएगा, रसोई बनाते बनाते हैरान। पार्वती को कहा फुर्सत है शिव की सेवा करने के। तो भक्तों ने कहा महाराज, शंकराचार्य जी कहते महाराज हमको फुर्सत है, हम तो सन्यासी हैं, हम सन्यासी हैं, ना पत्नी है, ना कोई है, ना बच्चे है, ना बच्चे है, ना बूढ़ी मां है, ना बूढ़ा बाप है, ना कोई है, कुछ नहीं, हम फुर्सत में हैं, इसलिए हमको अपने चरण की सेवा करने के लिए हमको नियुक्त करो, हम इसी में खुश रहेंगे महाराज। हरि ब्रह्मादीनाम निकट भाजाम असुलभम ये चिरम याचे शंभो शिव तव पदम भोज भजनम। अम्भा, अम्भ माने जल, अम्भोज माने जल से जो उत्पन्न हुआ, अम्भोज कमल, पद कमल, पद सरोज, चरण कमल की सेवा करने, भज माने भज सेवायाम, सेवा करने का अवसर हमको चाहिए चिरम याते। ऐसा नहीं करना कि एक बार नियुक्ति कर दी,
फिर बाद में हटा दो। चिरम याच, ये कंडीशन है। कब तक? बोले जब तक मैं जीव रहूंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, और आपकी कृपा होकर जीव भाव खत्म हो गया तो फिर मैं शिव स्वयं हो गया, तो फिर जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, फिर तो सेवा कराने की करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है। ये देख लो, आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है, इसलिए सेवा का अवसर मुझे दे दो। आगे कहते हैं, स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्री वा स्तुति नटन हास्ये स्वचतुर कथम राज्ञां प्रीतिर् भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। हे विभो, विभो माने व्यापक, विभु व्यापक, आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, महाकाश व्यापक है घटाकाश व्याप्य है, इसलिए आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं। हे विभो, मेरे में कोई कुशलता नहीं है, मैं एक संसारी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता, एक क्षुद्र राजा को भी खुश करने की कला मुझ में है नहीं, तो संसार में मैं जीऊंगा कैसे? क्योंकि संसार का नियम है वो। स्मृतौ शास्त्रे वेद्ये, कुछ लोग स्मृति शास्त्र को पढ़ते हैं, बड़े स्मृति का ज्ञान रखते हैं, और उन शास्त्र स्मृति का धर्म आदि का मनुस्मृति, हाँ, नारद स्मृति, हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका सब ज्ञान वाले हैं, वे लोग सबको स्मृति का व्याख्या करते हैं, सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके द्वारा उनका योगक्षेम चलता है। समझ गए ना? मैंने कोई स्मृति पढ़ी नहीं है, और जिसने स्मृति नहीं पढ़ी हो वो लोग तो फिर वेद आदि पढ़ा है, जो वेद को जानते हैं इसलिए वेद वेदांग को जानने वाले लोग वैदिक यज्ञ आदि कराते हैं, बड़े बड़े जजमानों के यहां जाकर और खूब दक्षिणा ले आते हैं, और उनके द्वारा दिए गए दक्षिणा से उनका अपना योगक्षेम चल जाता है। मैंने वेद भी नहीं पढ़ी है और यज्ञ में क्या कराऊं है? मैं किसी जजमान के यहां रुद्री कराने जाऊं तो वेद ही नहीं पढ़ा है तो मुझे रुद्री नहीं आती है, तो मैं कैसी जजमानी करूं और अपना योगक्षेम चलाऊं भाई? स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये, ठीक है, शास्त्र वेद आदि का पूरा नहीं जानते हो, लेकिन जड़ी बूटी रसायन को तो कुछ ज्ञान रखते हो ना, वैद्यकीय, तो कोई बीमार हो गया तो उस अनुभव का प्रयोग करके, कोई बीमार है उसका रोग दूर हो गया, निदान हो गया, तो उससे जो मिलेगा उससे योगक्षेम चला लेगा वो। मुझे वो वैद्यकीय शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति का भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे अपनी रोजी रोटी करूं, कैसे योगक्षेम करूं? शकुना, शकुन माने शुभ मुहूर्त आदि, शकुन शास्त्र, लोग कहते हैं ना आंगन के ड्योढ़ी में कोई काक क्या क्या करने लगा, लोग उसकी भाषा को संकेत को समझते हैं, हाँ, ते आ ये काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया तो इसका मतलब ये शुभ समाचार है, और काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया इसका मतलब ये अशुभ समाचार है, इसको शकुनस बोलते हैं, शकुन ज्ञान। हाँ, क्या शुकन, हाँ उसी को संस्कृत में शकुन कहा, तो शकुन शुकन,
वो भी मुझे ज्ञान नहीं है, है? बिल्ली दाहिनी से निकली तो उसका क्या होगा, बाएं से निकली तो उसका क्या होगा, आगे से गई तो उसका क्या होगा, ये ज्ञान सुकन ज्ञान है। खाली घड़ा वाला सामने आ गया तो अशुभ हो गया, तुम लोग मानते हो कि नहीं है? यात्रा में कोई खाली घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो फिर वो अवशकुन हो गया, कोई भरा हुआ घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो शुभ शकुन हो गया, ये ज्ञान भी मुझे नहीं है। रात को ये स्वप्न देखा इसका फल ये होगा, हाँ इतनी बजे देखा था उसका ये फल होगा, प्रातः काल देखा था कि मध्य रात्रि में देखा था कि सोते ही देखा था कि उठने से पहले देखा था कि हाँ? उसका क्या फल होगा? एक ही स्वप्न का एक ही फल नहीं होता है, किस समय देखा इस पर भी निर्भर करता है, हाँ इस पर भी निर्भर करता है। यदि रात को स्वप्न तुमने देखा प्रातः काल कोई सर्प आया और तुमको टोक लिया, काट लिया उस सर्प ने और खून निकल गया, तब माला माल, बस माला माल। एक सर्प को तुम पाल के रखना और कहना हे सर्प ठीक सुबह के समय में तुम मेरे सामने आना और मुझे टोकना काटना, लेकिन स्वप्न में हो, क्योंकि महात्मा ने कहा है माला माल ले जी, लेकिन तुम्हारे कहने से सर्प आएगा? वो अपने मर्जी से आएगा, हैं? देख लो ऐसा नहीं। यदि यात्रा में निकलो मरा हुआ शरीर के अर्थी जाते हुए देखा तो बहुत शुभ माना जाता है ले जी, स्वप्न में। जागृत में भी अर्थी दिखाई पड़ी मृत्यु शुभ माना जाता है, इसको कहते हैं सुकन शास्त्र। हाँ उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे कौन पालेगा? स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ। मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि किसी को प्रशंसा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया कविता लिखूं और वो कविता सुनाऊं, उस सुनकर प्रसन्न होकर वह कुछ दे। राजा भोज के नवरत्न थे, है? राजा भोज के नवरत्न सुना है कि नहीं? राजा भोग बड़ा भारी विद्वान था, लेकिन राजा था, और बड़े बड़े विद्वानों को, नौ विद्वानों को उसने राजपुरोहित बनाकर रखा था, और सभी से एक ही काम था सभी का कि बढ़िया सा बढ़िया राजा की प्रशस्ति लिखो, कविता लिखो और राजा को सुनाओ। हाँ काव्य सरिता है, काव्य गोष्ठी होती थी। कहते उन नवरत्नों में एक रत्न कालिदास, हाँ दूसरा रत्न बाघ, बाघ भट्ट है, ये ऐसे ऐसे कई रत्न थे। तो कहते हैं उसका नियम था जो कविता सुनाएगा, सबसे बढ़िया कविता सुनाएगा, उसको एक सुवर्ण सर्पी देता था राजा भोज। तो हमेशा कालिदास तो था ही, वो ऐसी कविता रचना कर देता था कि और की कविता फेल। कालिदास को रोज एक सुवर्ण मुद्रा मिल जाए, सब लोगों को उसकी ईर्ष्या हो गई, एक कालिदास रोज इनाम ले जाता है हमको कुछ नहीं मिलता। तो कालिदास जी इस बात को समझ गए कि मेरी इस सफलता को देखकर ये अन्य कवियों को ईर्ष्या हो गई है, ऐसा करता हूं एक हफ्ता मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं नहीं जाऊंगा, सभा में जाऊंगा ही नहीं। हाँ जाए वो लोग जाए तो बोले सब कवियों को देखो भाई कल हम नहीं आएंगे, हमारा काम है घर में, मेरी पत्नी कह रही है एक महीने का राशन खत्म हो गया है। कालिदास के गुरु तो उसी की पत्नी है ना, तो गुरु की सेवा करनी है कि नहीं, एक महीने का राशन खत्म हो गया तो कल हमारे को राशन खरीदने का दिन है, हम तो राशन खरीदने, तुम लोग कविता बनाना ले जाना और राजा को सुनाना, पुरस्कार ले लेना तुम लोग, कविता ले लेना, कविता सुनाना, पैसा ले लेना। आप तो उन लोगों को मौका मिल गया कविता की लिखना है, सब मिलकर कविता लिखने शुरू किया। किसी एक के दिमाग में स्फुरण ही नहीं होती है, कवि काव्य का विषय कविता का भाव ही स्फुरण नहीं हो रही है, क्या करे? तो अकेले अकेले तो कविता पूरा होना था नहीं, सब मिलकर एक कविता बनाओ और उसको सुनाएं और उससे जो मिलेगा हम सब लोग बांट लेंगे ले जी, चलो वही सही। तो बोले ठीक है कविता लिखो, तू लिख शुरू तो कर। हाँ

हो। एक लाइन पूरी हो गई, दूसरी लाइन तो नहीं, दो लाइन पूरी हो गई, भोजनम देहि राजेंद्र, एक लाइन, दूसरी लाइन साक सूप समन्वित, हाँ दो लाइन पूरी हो गई, चार लाइन की कविता है। अब दो लाइन कौन पूरा करेगा, उसको कहे तू पूरा कर, नहीं आ रहा है, उसको कहे तू पूरा कर, जाने दो, ये कविता लिखना भी एक झंझट का काम है। सब लोग छोड़ दिए, आधा कविता लिखी दो लाइन की छोड़ दिए। कालिदास को पता चला ये कविता लिख नहीं पा रहे बेचारे, जाके उन्होंने दूसरी दो लाइन उन्होंने अपने तरफ से लिख दिया। क्या लिखा पता है, माही संच शरत चंद्र चंद्रिका धवला ददी, ये वाक्य लिख दिया। अरे भाई भोजन हो, दाल और सब्जी हो, अचार चटनी हो, लेकिन दही न हो तो फिर क्या। दही की विशेषता देखो, विशेषण क्या है, कैसा दही, माही संच भैंस का दही, गाय का नहीं, दूध पीना हो तो गाय का और दही खाना हो तो भैंस का हो, माही संच कंडीशन रख दिया, भैंस का दही कैसा, शरत चंद्र चंद्रिका धवला दधी, शरद ऋतु के जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के जो पूर्ण चंद्रमा का जो स्वच्छ सफेद धवल है, वैसा ही सफेद दही चाहिए, भैंस का दही भी जोड़ देना। अब शरद चंद्र चंद्रिका धवला दधी ये श्लेष, ये विशेषण तो कालिदास के बाद और कोई नहीं लिख सकता है। कालिदास जी ने कह दिया कि जाओ सुनाओ, और जो पुरस्कार देगा वो तुम लोग बांट के ले लेना, हम कल नहीं जाएंगे। गए सभी पंडित लोग, बोले आज कालिदास नहीं आया, बोले आज उसकी पत्नी ने आटा दाल खरीदने का कह दिया है, वो नहीं आ रहा है। तो बोले आज हम लोग आए हैं, कविता लाए हो, बोले हाँ सुनाओ। एक पंडित खड़ा हुआ विद्वान, सुनिए हम भी कवि है, क्या कविता है सुनाओ। भोजनम देहि राजेन्द्र साक सूप समन्वित, माहि संच शरच्चंद्र चंद्रिका धवला दधी। राजा भोजन है तो वो तो बड़ा पारखी था, बोले ये कविता तुम लोगों ने लिखी है। हां महाराज पूरी कविता तुम लोगों ने लिखी है। आप तो डरने लग गए सब, तो घबरा गए, ये राजा तो पारखी था कविता का, काव्य का, तुम लोगों ने लिखी हो भले लिखा हो, लेकिन पुरस्कार पाने का हक तो कालिदास को ही है। ये दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन तो उत्तरार्ध तो कालिदास ने ही लिखा है, ईमानदार से बोलो। हां सरकार क्षमा करना, माफ करना है। देखो कालिदास में वो कला थी, इसलिए वो अपना योगक्षेम चला रहा था। शंकराचार्य जी कहते महाराज मुझ में वो कला नहीं है, तो किसी राजा को प्रसन्न करने की वह कला भी नहीं है, तो मैं अपने योगक्षेम कैसे चलाऊं। स्मृतौ शास्त्रे वैद्य शकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा, और पुराण का ज्ञाता भी नहीं हूं। सब पुराण का ज्ञाता कौन है बोलो, पुराण के व्याख्याता कौन है, कथाकार कौन है, हैं? वेदव्यास कथाकार नहीं है, रचनाकार है। कौन? सुखदेव जी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, सूत जी। शौनक तो श्रोता है, हाँ सुखदेव जी भी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, भागवत के व्याख्याता हैं। सभी पुराणों के व्याख्याता कौन है? सूत जी, वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी। सूत जी तो सभी पुराणों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि सारे पुराण वेदव्यास से पढ़ा है और व्याख्या करने में बड़े चतुर हैं। अब मैं सूत जी जैसा नहीं हूं, इसलिए पुराण का ज्ञान भी मुझे नहीं है। कथा करो और पैसा कमाओ है, वो कला मुझ में नहीं है। पुराणे मंत्रे वा, मंत्र तंत्र भी नहीं जानता हूं मैं,

0: स्तुति नटन से सुचतुर। ठीक है, विद्वान होने के लिए तो ये सारी चीज चाहिए, लेकिन यदि तुम विद्वान नहीं हो तो नाच तो सकते हो? बोले नहीं महाराज, मैं नाचना भी नहीं आता है, स्तुति गान भी करना नहीं आता है, है? आप लोगों को यही श्लोक को तुम गाओ कहो तो क्या मेरे स्वर से स्वर मिलाकर गा पाओगे? हैं? गा पाओगे? बुरा नहीं मानना, आप और हम अलग अलग गाने शुरू करें, अलग अलग गाने शुरू करेंगे तो कोयल और गधे की आवाज निकलेगी, बुरा नहीं मानना। हो स्तोत्र कविता गाने की भी स्वर कला है, संगीत की, वो मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरे के लिखी हुई कविता भी गाना चाहिए, गाना आना चाहिए, तो उसके स्वर से भी प्रसन्न हो जाएंगे और योगाक्षम ऐसे चल जाएगा। मुझे वो भी नहीं आता है तो गाना नहीं आता, नाचना तो आता है मूर्ख, मुझे नाचना भी नहीं आता है। इसलिए हमेशा जब नाचने के लिए मैं खड़ा होता हूं स्टेज टेढ़ा ही होता है। नाचने जो नहीं जानते हैं उनके लिए आंगन हमेशा टेढ़ा होता है, नहीं कहा होता है कि नहीं, नाचने नहीं जाने आंगन टेढ़ा है। हास्य कोई चुटकुला भी सुनाने मुझे नहीं आता है, जो चुटकुला सुना के लोगों को मनोरंजन करूं वो भी नहीं आता है मुझे भाई। अचतुरा, ये अचतुरा का सब जगह अन्वय करते जाना है। स्मृत हूं अचतुरा, कुशल नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं आता है चतुरता की तो बातें ही छोड़ दो। तब मेरे सामने ये संसार के मर्तलोक के मरण धर्म राजा कैसे प्रसन्न होंगे और मेरा योगक्षेम कैसे चलेगा? कौन पालेगा मुझे, कौन देगा मुझे जीने के लिए राशन पानी? स्मृत शास्त्रे वैद्य सकुन कविता गान फणित पुराणे मंत्रे व स्तुति नटन से स्वचतुरा कथम राज्ञाम प्रीतिर्भवति मई। और दूसरी बात, तब जब तक जियोगे जीने के लिए योगक्षेम की उपलब्धि मुझे कहां से होगी? और दूसरी बात, मैं पशु हूं हाँ, और आप पशुपति हो, मैं पशु हूं आप पशुपति हो। शिवजी ने कहा कि तू पशु कैसे, तू तो मनुष्य है। बोले पशु की परिभाषा आपने क्या किया महाराज, जो पास से बंधा हुआ होता है वो पशु होता है हाँ? पास बद्धो ही पशव पास पंचविधो स्मृतम, ये जो पास से बंधे उसका नाम पशु। और जीवात्मा पांच पासों से बना हुआ होने के कारण हर जीवात्मा पशु है हाँ। और सबसे बड़ा पशु का लक्षण तो यह है कि जो अपने को न जाने वो पशु है, समझ गए कि नहीं? जो अपने को जाने वो पशुपति, जो अपने को न जाने वह पशु। को अहम, मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं है, मैं अपने को नहीं जानता हूं, यही प्रमाण है कि मैं पशु हूं। वेदांत ने यही परिभाषा किए हो और इसी के चलते आप पशुपति है, क्योंकि आप अपने को जानते हो इसलिए पशुपति हो, मैं अपने को नहीं जानता हूं इसलिए मैं पशु हूं। पशु माम सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ हे सर्वशक्तिमान, माम पशुम प्रथित मत्वा जानकर प्रसिद्ध, आप सर्वज्ञ हैं ये बात प्रसिद्धि है, आप सर्वशक्तिमान हैं ये भी प्रसिद्धि है, आप अहेतु का कृपा सिंधु हैं ये भी प्रसिद्धि है। प्रथित का अर्थ प्रसिद्ध, सारे तीनों लोक में आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, करुणा वरुणालय अहितुक दया सिंधु कृपा सिंधु हाँ? कृपया पाम माम पालय विभो, ये व्यापक कृपा करके मैं पशु हूं, अपने आप को भी पालने की क्षमता मुझ में नहीं, क्योंकि अपने आप को पालने की क्षमता तो उस पे है जो शास्त्र को जानता है, वो अपनी कला का है, अपनी बात चातुर्यता के, जो नाचने जानता है वो अपनी कला का प्रदर्शन करके योगक्षम करेगा, कोई कविता गान करके करेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, अज्ञ हूं मैं, को हम, मैं अपने को कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरे पालन करने का योगक्षेम की जिम्मेवारी हे शिव आप पर निर्भर है, इसलिए माम पालया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Music. In this, you are about to listen Veda Mantram. The title is Siva Suprabhavam, presented by Vedamantram.com team. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: वासुः इति अष्टादशोऽध्यायः।
1: ॐ
2: नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग्। ॐ नमः शिवाय।
3: ॐ नमः शिवाय। डियर् बिजनेस् आफ् शैवम् डाट् आर्ग्, दि नेक्स्ट् प्रोग्राम् यु आर् अबौट् टु लिसन् इस् स्पिरिचुवल् डिस्कोर्स्। टैटल् इस् அக்ஷர மணமாலை, பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ நொச்சூர் வெங்கட்ராமன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
4: அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ.

दशबाहुस्त्व निमिषो नीलकंट उमापतिः विश्वरूपक स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलोगणः गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च मन्त्रवित् परमो मन्त्र

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हरवोम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: करते हो ना आप जी गंध कौन सा गंध है? देखो थोड़ा दुर्गंध आ रहा है इस हॉल में, करता है कोई कह दे ना दुर्गंध आ रहा है तो उसको पहले भान ना भी हो ना तो सावधानी पूर्वक के नाक सांस खींच कर मने तो खबर न थी पड़ दो, करता है हाँ हाँ छे छे गंध छे दुर्गंध छे सुगंध छे है ना। तो वराह भगवान ने सू सू करके ही खोजा था पृथ्वी को, क्योंकि ग्राण इंद्रिय के साथ पृथ्वी का संबंध है तो प्रगंधवती पृथ्वी। तो तभी ग्राण इंद्रिय का प्रयोग न किया होता तो शायद वराह भगवान को पृथ्वी खोजना मुश्किल पड़ता। तो उन्होंने ग्राण इंद्रिय का प्रयोग किया, लिया अपने नाक, इसीलिए नाक बड़ा किया वराह अवतार का, कितना बड़ा नाक बा। तो कोई अच्छा काम करते हैं तो व्यक्ति भी नाक बड़ा कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है? वही होता है शुकर। तो अहंकार अभिमान से नाक बड़ा कर लेता है ना तो वो शुकर ही है और कुछ नहीं है। कर्तृत्व अभिमान से नाक बड़ा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन करता है, जीव भाव है उसमें। यदि उस विष्टा में भोजनत्व न होता तो वो उसके प्रति अनुरक्त क्यों होता है? इसका मतलब भोजन अब तक का बात नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हृदय स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। होती है, भोजनत्व तो विद्यमान होने पर भी उसको भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि कदाचित खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कहो, जैसे गुजराती लोग करते हैं, शाम का भात बच गया तो सुबह मुठिया बना देते हैं, करते हैं कि नहीं? दाल ढोकली बना देंगे, चक्के बनाएंगे, कुछ न कुछ बनाते हैं, शाम को बचा हुआ कुछ है तो सुबह कुछ दूसरे रूप। अब खुदा ने खासा गुजराती के बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, अब गुजराती तो भात को मुठिया बना देते हैं, खुदा ने खासा कोई नेपाली हो तो उसी विस्का को मुठिया बना के सामने रख दे दूसरे थाल में, तो एक चाह शू छे तो कहा मुठियो छे मुठियो, इसके अंदर देख ले तो जब खाएगा पता चलेगा मुठियो क्या है। तो भोजनत्व का बात नहीं हुआ, लेकिन स्वीकार करने की बात है। विष्टा को कोई भी मनुष्य भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए जहां वो स्वीकार कर सकता है उसी को ही उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए सर्व रूप को परमात्मा शिव के रूप में कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। तब फिर शंकराचार्य जी ने, कालिदास ने, पुष्पदंताचार्य जी ने, आचार्यों ने मिलकर आठ स्वरूप को ही शिव के रूप में प्रस्तुत किया, अष्टमूर्ति। जैसे दर्पण मिरर भी पार्थिव है और दीवार भी पार्थिव है, दोनों पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है, पृथ्वी का परिणाम है, लेकिन दीवार में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है और मिरर में दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार के यूं तो सभी जगत के जितने भी पदार्थ हैं, परमाणु से लेकर सुमेरु पर्यंत, सब के सब पदार्थ शिव स्वरूप ही हैं, शिव ही हैं, शिव स्वरूप ही हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। तब कहा कि इन आठ स्वरूप में शिव की भावना करो। भोरम भाजनो नीलो अम्बर महर नाथो हिमांशु उपमान इत्याभाति चरा चरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम। सारा चर अचर सारा विश्व ब्रह्मांड यही आठ स्वरूप से व्याप्त है। सूर्य भगवान शिव का प्रत्यक्ष, तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि है, गणपति अथर्व शीर्ष में पाठ करते हो कि नहीं? तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप लोग कहते होने कि महाराज आपको परमात्मा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं तुमको सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं है? सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो वही तो भगवान है, और कौन सा भगवान खोज रहे हो तुम। उसको प्रत्यक्ष दिखते हुए सूर्य को परमात्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पाते हो तो फिर परमात्मा का अनुभव तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। पृथ्वी प्रत्यक्ष दिख रही है, अनुभव में आ रहा है, उसको तुम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो शायद परमात्मा का अनुभव कभी भी नहीं कर पाओगे। जल है भोरा अंबांसी अनला तेज है, अग्नि है, यही तो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अनिला वायु और अंबर आकाश, हिमांश अहरनाथ हिमांशु चंद्रमा, अहरनाथ सूर्य, पुमान ये सब यजमान मूर्ति, जीवात्मा जितनी भी हैं यही सब यजमान मूर्ति हैं। इत्याभाति चराचरात्मकम इदम् यस्यैव मूर्ति अष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतम् यस्मात् परस्मात् विभो। मैं जब विचार करता हूं तो उस परमात्मा के अलावा दूसरा पदार्थ प्रतीत होता ही नहीं है। ऐसा होता हुआ भी माया परिभ्रामितः उस परमात्मा का तो भान नहीं होता, खाली जगत नाम रूप का भान होता है। कहता है कि कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, सब विरोचन होके बैठ गए हैं, सब विरोचन हो गए हैं, उसी के हृदय में छुप कर बैठे हैं भगवान, और विरोचन खोजता फिर रहा है वैकुंठ पाताल स्वर्ग और पाताल मर्त्य लोक में, कहाँ गया, मेरे से डर के मारे भाग गया, मर गया, खत्म हो गया, है नहीं पृथ्वी में परमात्मा, हमने सारे तीनों लोक खोज डाला, कहीं नहीं है परमात्मा, निश्चिंत होकर बैठ गया वो, क्योंकि खोज कहाँ रहा है वो, बाहर खोज रहा है। और जबकि बाहर भी वही परमात्मा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और जो मानने को तैयार नहीं है तो परमात्मा कहाँ से प्रकट होगा। संत मेनम तथो विदो असत ब्रह्मेति चेत वेदा असत एव भवति। जो परमात्मा नहीं है कहता है, परमात्मा की सत्ता का निषेध करता है, वह भी सत्ताहीन होकर उस स्वयं निषिद्ध हो जाता है, और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदा संत मेनम तथो विदो। जिसने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तो वो परमात्मा के अनुभव कर सकता है। ये सब साधन और साध्य का स्वरूप का वर्णन हो गया है। एक श्लोक से लेकर आठ श्लोक तक साध्य के स्वरूप का वर्णन किया है, और नौवां श्लोक उस साध्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बता दिया है कि उसी की उपासना से उसी को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो दसवां श्लोक है फलश्रुति है। वेदांत श्रवण करने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनने का क्या फल है, विचार करने का क्या फल है, पाठ करने का क्या फल है, क्या फायदा, हमको ये वाक्य याद आ जाता है। बहुत पहले प्रेम कुटीर में कथा करते थे नियमित रूप में, जैसे अभी प्रेमपुरी में कर ही रहे हैं, तभी से ही प्रेमपुरी और प्रेम कुटीर, वहां मई महीना करते थे या जून महीना, वहां पूरा करते हम यहां आते थे। अप्रैल में विश्वदान जी करते थे प्रेम कुटीर में, विश्वदान जी प्रेम कुटीर पूरा करके प्रेमपुरी आते थे मई में, और हम प्रेम कुटीर जाते थे, फिर विश्वदान जी यहां मई में यहां करके फिर अहमदाबाद जाते थे, और हम फिर जून में यहां आते थे। तो वहां हम कथा कर रहे थे तो एक सज्जन आके, काफी होता है ना राम नाम लिखने का, बांटने लग गए श्रोताओं के बीच में, राजस्थान से आए थे वो, और हमें कुछ काफी रखे गए ताकि महाराज और कुछ हैं उनको दे देना, राम नाम लिख कर रखें और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम गए, हम राम नाम मंत्र बैंक हमने खोल रखा है। हमने कहा ठीक है, एक बहन आई, हमने दिया उसको, ले लिख लो राम नाम, लिख लो काफी, पूरा भर के ले आना। कॉपी और पेन दोनों चीज दिया। महाराज ये राम नाम लिखने का क्या फायदा होगा, फट से प्रश्न कर लिया उन्होंने, और हमारे मुख से फट से उत्तर निकला बेफायदा होगा। क्या फायदा होगा तो फिर बेफायदा होगा, और क्या फायदा होना है। अरे भाई तुम जिसको फायदा समझ रहे हो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तुम इससे फायदा, तुम्हारे दृष्टि में फायदा किसको कहते हैं? शरीर में रोग होगा तो रोग चला जावे, उसको तुम लाभ कहोगे ना? तो धन है तो कहीं लगाया हुआ तो वो धन उसको 10 दुगना होकर तुम्हें वापस आ जाए, तुम उसको फायदा कहोगे? है बेटा यदि पढ़कर डिग्री लेके आवे तो उसको तुम फायदा कहोगे? ये सब लोग संसार के लोग इसी को ना फायदा मानते हैं। हमने कहा इसको पूरा कप लिखोगे तो बेफायदा होगा। वो क्या होता है महाराज बेफायदा, हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो ये संसार तो चित्त के बिगड़ेलपना के काम से संसार उपलब्ध होता है। चित्त जब तक बिगड़ेगा, बिगड़ा रहेगा, तभी तक ये संसार के सब ठीक ठाक रहेंगे। और चित्त यदि ठीक हो जावे तो फिर ये चित्त ये संसार चला जाएगा। और तुम पूरी तरह निष्ठा से ये राम नाम लिखोगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक है, मैं तो यथार्थ साधु की भाषा में व्याख्या करती, तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा। और शायद इसी को तुम लोग कहते हो बेफायदा, संसार बिगड़ जाना तुम लोग बेफायदा कहते हो, और हम कहते हैं कि संसार बिगड़ जाना सबसे बड़ा फायदा है। है कि नहीं बोलो? आत्मलाभ अपिस दक्षिणामूर्ति के मानसोल्लास सुरेश्वराचार्य जी के पहले ही श्लोक है, आत्मलाभ परो लाभो नास्ति कवयो विदुः तल्लाभार्थम कवि स्तौति स्वात्मानम परमेश्वर। आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं, और उसके आत्मलाभ के मूल साधन यही है कि भगवत चिंतन करो, नाम स्मरण करो, सत्संग करो, उसी से आत्मलाभ है। और तुम्हारे दृष्टि में तो ये बेफायदा हुआ कि नहीं, और हमारे दृष्टि में यही सबसे बड़ा लाभ है, आत्म उपलब्धि, चित्त शुद्धि। ये जो है यहाँ फलश्रुति सुनाया जा रहा है, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तथा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम्। फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ है। ये तो और भी सुंदर बात कह रहे हैं, हमने तो थोड़ा खतरनाक बात कह दिया था, बेफायदा होगा, संसार बिगड़ जाएगा। ये तो वो भी नहीं कह रहे, बड़े दयालु हैं शंकराचार्य जी, बड़े कृपालु हैं। संसार के जीव घबरा जाएंगे, बेफायदा होगा कह देंगे तो आत्मानंद तुमने गलत कह दिया, ऐसा नहीं कहना, बहुत फायदा होगा कहना चाहिए, तभी वह उसमें रुचि होगी, तभी प्रवृत्त होंगे, नहीं तो घबरा जाएंगे। देहाध्यास छूट जाएगा तो घबरा जाएंगे, देहाध्यास छूट जाएगा तो फिर खाना भी छूट जाएगा, बोले हाँ छूट जाएगा, तब तो फिर श्वास लेना भी छूट जाएगा, बोले हाँ छूट जाएगा, तब तो कैसे बेकार है, तुम्हारा वेदांत नहीं चाहिए। सब खुले रूप में सीधे कह देंगे तुम्हारे वेदांत हमें नहीं चाहिए। यहाँ कह रहे हैं बड़ा सुंदर, क्योंकि सर्वात्म भाव से संबंधित ये स्तोत्र है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, सब कुछ परमात्मा है, इस भाव को सिद्ध करने के लिए। अस्ति भाति प्रियम चैव नाम रूपम च पंचमम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम्। अस्ति भाति प्रिय, इस तीन स्वरूप के माध्यम से सारे के सारे जगत में यही तीन भाव विद्यमान होने के कारण यही सर्वात्म भाव है परमात्मा की, परमात्मा के सर्वात्म भाव को प्रकट करने वाला ये स्तोत्र है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे, इस स्तोत्र में दक्षिणामूर्ति के ये स्तोत्र में सर्वात्म भाव को प्रकट करने के सारे विचार व्यक्त किए हुए हैं। तेना इसी कारण से अस्य स्तवे यह स्तोत्र का तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानात् संकीर्तनात्। चार चीज शंकराचार्य जी ने यहां रख दिया क्रम से। पहले क्या किया, स्तोत्र का ठीक से श्रवण कर लो, तेनास्य श्रवण अस्य श्रवणात् स्तोत्र से श्रवणात्, इस स्तोत्र के ठीक से श्रवण करने से। खाली श्रवण मात्र से नहीं, मननात्, क्योंकि श्रवण के बाद मनन है। आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्यो निधिधाषितव्य, श्रुति का वाक्य क्रम से है ये। श्रवण के बाद मन, एक घंटा श्रवण करो तो शास्त्र ने लिखा है, एक घंटा यदि तुम श्रवण करते हो तो 100 घंटा मनन करनी चाहिए। और हम लोग केवल श्रवण करते हैं, मनन नहीं करते, इसलिए सुने सुने पाके कान तो ना आया ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि हम मनन नहीं करते हैं इसलिए श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते कान पक जाते हैं। हमने श्रवण को इति कर्तव्यता मान ली है, मनन में हमारी गति नहीं है, प्रवेश नहीं है। तेनास्य श्रवणात् श्रवणात् सतगुणम्, 100 गुणा मनन करना चाहिए। अब मनन से 1000 गुणा निधिध्यासन करनी चाहिए। हमको लगता है कि निधिध्यासन के तो हम 100 में 1 पॉइंट भी, उस निधिध्यासन की भूमिका को हम छू ही नहीं पा रहे। मनन की भूमिका में कदाचित कोई बैठा हो, प्रवेश कर लिया हो 1 पॉइंट, जितना श्रवण किया है उसके 1 अंश, 100 में से 1 अंश कोई मनन कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन निधिध्यासन की भूमिका में तो हम प्रवेश ही नहीं कर पाए हुए हैं। तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानात्। यहां जो ध्यान शब्द कहा गया है वह निधिध्यासन के लिए ये ध्यान शब्द, क्योंकि वेदांत में जो ध्यान शब्द है वह निधिध्यासन के लिए ही आता है। चित्त वृत्ति निरोध का नाम वेदांत को ध्यान में इष्ट नहीं है। हाँ, चित्त वृत्ति बने रहे, चित्त वृत्ति से एकमात्र परमात्मा भाव बना रहे और उसी निष्ठा में एक प्रवाह, मनन में विरोधाभास परिहार आदि होता है, उसके बाद निश्चित अर्थ किया गया जो निष्कर्ष है उसी में चित्त टिका रहे, उसी भाव में, उसी को निधिध्यासन कहते हैं और उसी को ध्यान कहते हैं। और उसी का फल होता है धर्म मेघ समाधि, जो कि पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने कहा है, उसका नाम है धर्म मेघ समाधि। वर्ष 1300 हजारों धर्म मेघ, मान लो कि साक्षात वह अमृत का वर्षा, अमृत की वर्षा होती है, मान लो कल्पना कर। अनेन विलयम याति ही, जन्म जन्मांतर कृत जितने भी संचित कर्म हैं उस धर्म वेग समाधि से सब विलय प्राप्त हो जाते हैं, पंचदशी में कहा गया। इसलिए यहां कहा तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्। उसके बाद मेरे ध्यासन हो और फुर्सत मिले तो अपनी अनुभूति को दूसरों को भी सुनाओ, संकीर्तनात्, तुम भी गाओ, मस्ती से गाओ। दुनिया की चर्चा करने की अपेक्षा तो इन्हीं स्तोत्रों को गुनगुनाओ, गुनगुनाते रहो। और क्या करोगे, बोलने का वादा किया है तो सदा गुनगुनाते रहना। तुम लोग तो बोलने का वादा है ही नहीं है, बोलने का वादा किया है तो क्या करोगे, वादा नहीं किया इसलिए बोलते रहोगे, और क्या, गुनगुनाओ, बोलने की वादा करो, मौन हो जाओ और इसका गुनगुनाओ, संकीर्तना सुनाओ, अभ्यास बढ़ता है। सुने हुए को दूसरे को सुनाओ तो अभ्यास बढ़ता है। हम लोग पढ़ते समय में पढ़ते थे, क्लास के बाहर निकले, फिर बाहर बैठे, क्लास के सभी साथी लोग बैठते थे, फिर डिस्कशन शुरू करते थे, इसका क्या अर्थ हुआ है। तो उसने जो समझा वो बताएगा, हमने जो समझा उसको बताएंगे, उससे छूटा हुआ है हमसे वो कवर कर लेगा, हमसे छूटा हुआ है वो उससे शेयर कर लेगा। इस तरह हम लोग परस्पर बैठकर मनन करते थे, विचार करते थे, संकीर्तन, सुनी हुए को सुनाओ। सर्वात्मत्व तो महाविभूति सहित, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम सर्वात्मत्व भाव की प्राप्ति उसको भी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में सारे ऐश्वर्य भाव विद्यमान है, सर्वैश्वर्य भाव है ना परमात्मा में, उसी को कहा महाविभूति सहितम। क्योंकि परमात्मा भाव की प्राप्ति होगा तो परमात्मा में जो ऐश्वर्यता है, भगवत्ता है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से स्त्रीय ज्ञान वैराग्य शरणाम भग इति ऋणा, वो सारे ऐश्वर्य उस श्रवण करता, मनन करता, निधिध्यासन करता को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्वतः प्राप्त हो जाएगा मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसका तो वो स्वरूप है ही है, उसके लिए कुछ उत्सर्ग करने की जरूरत नहीं है, वो तो आगंतुक जो नैसर्गिक है उनको हटाना है बस, उपाधियों को हटाना है, भ्रांति को हटाना है, भ्रांति को हटते ही उसका ये सारा का सारा भाव तो परमात्मा के सर्वात्म भाव तो उसका स्वरूप ही है, इसलिए स्वतः अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः, उसकी ईश्वरता परमात्मा भाव वो स्वतः सिद्ध है। सिद्धे तत् पुनरस्तदा, लियो जी डरना नहीं, क्या फायदा है तो तुम जिसको फायदा कहते हो ना वो भी तुम्हें मिलने वाला है। पुनः सदा सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बोलते हो ना परमात्मा को, क्या बोलते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, और सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाएगा तुम्हें तो वो अष्ट सिद्धि नव निधि तुम्हारी अपने ही चरण में अपने आप आ जाएगी कि नहीं है? है तो तुमको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और तुम कृपा करके और को दे सकोगे। अभी तक तुम भिखारी थे, अब मालिक हो जाओगे, देने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपना सर्वात्मा भाव प्रकट हो गया है। सिद्धे तत् पुनरस्तदा अणिमा लगिमा प्राप्य प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये सारे भाव तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, वो भारी को हल्का कर देना, हल्के को भारी बना देना, यही तो ये अष्ट सिद्धि के अंतर्गत है, और ये आपकी शक्ति क्षमता है कि भारी को हल्का बना रहे हो, है कि नहीं? नहीं तो 75-80 किलो वजन लेकर चलना संभव था? है 80 किलो वजन कौन लेकर चल रहा है, कम है 80 किलो वजन ढोकर चलना, ये तुम्हारी सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धि की एक सिद्धि है, ये बड़े भारी को हल्का करके तुम्हारे स्पर्श होते ही इतना भारी भरकम शरीर 80 किलो वजन एक फूल की तरह तुमको भान ही नहीं हो रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं, भान हो रहा है, है? बोलो क्या है? तुम्हारी सिद्धि का फल है कि नहीं, ये परमात्मा भाव है कि नहीं, बोलो। अणिमा लगिमा प्राप्य प्राकाम्य, देख लो, अणिमा यह है कि तुम नख से लेकर शिख पर्यंत ये पंचभूतात्मक शरीर के एक एक अंग अंग में व्याप्त हो, व्याप्त हो कि नहीं, है? यही तुम्हारी व्यापकता है, अणु अणु में पहुंचे हुए हो, रग रग में पहुंचे हो, ये तुम्हारी यही तो सिद्धि है। तुम कहां नहीं हो, पूरे पिंड में व्याप्त हो गए हो तो कम तुम्हारी सिद्धि है ये। अणु रणीयान महतो महीयान, अणु से अणु यह है कि तुम हिता नाम के नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो। 72 करोड़ नाड़ी, कितनी सूक्ष्म होंगे 100 नाड़ी का, 72 करोड़ बालाग्र शतभाग का, तुम्हारी जो मुख्य नाड़ी है बाल के अग्रभाग की जो नोक है इतनी बारीक, तो तुम्हारे मुख्य नाड़ी है उनका 72 करोड़ भाग हुआ है। यानी कितनी सूक्ष्म की कल्पना कर लो, और उसके अंदर तुम वितरण कर रहे हो, आराम से घूम रहे हो, तो कितनी सूक्ष्म हो, अणु हो, और इतनी महान हो कि नख से लेकर शिख पर्यंत तुम व्याप्त भी हो। अणु रणियान महतो मयान, ये सब अष्ट सिद्धि स्वतः प्रकट हो जाता है, तो परिच्छिन्नता भाव समाप्त हो जाता है, दासता भाव समाप्त हो जाती है, दीनहीन भाव समाप्त हो जाता है, परम संतुष्टि की प्राप्ति स्वराट भवती। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, स्वराट भवती। वो तो अपने आप राजा हो जाता है, सम्राट हो जाता है, और क्या, पिंड का राजा हो जाना ही ब्रह्मांड का राजा है भाई। तुम ठीक से पिंड का राजा नहीं बनते हो, इसलिए ब्रह्मांड के दास बनकर घूम रहे हो। सिद्धे तत् पुनरस्तदा परिणतम ऐश्वर्यम अव्याहतम, बिना रोके सारे ऐश्वर्य तुम्हारे आधीन हो जाएगा। अमानव पुरुष तुम्हें तो स्वागत करने के लिए आएंगे, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय में चल रहा है ना, यही आओ आओ, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये स्तोत्र पाठ की फलश्रुति के साथ साथ ही आज ये 28 दिवसीय दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रवचन श्रृंखला को यही पूरा करते हैं, और आज ही हम फिर शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं बहुत दूर, 7 समुद्र पार यूएसए जा रहे हैं, रात की फ्लाइट है, तो इसलिए 2 दिन हम इस बार से ये प्रवचन की श्रृंखला के अंतर्गत 30 तारीख तक के क्रम को 2 दिन पहले विराम करते हुए हम जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था, आगे की व्यवस्था समिति संचालक, आश्रम संचालक के हैं, वे लोग सब कर रहे हैं, और कल से फिर सारी व्यवस्था होगी। तो आशा है कि ये सत्संग इसी तरह चलता रहे, किसी न किसी प्रकरणों के माध्यम से हम वेदांत के रहस्यों को समझें, और परमात्मा के साथ हमारी भावना जुड़ी रहे, और परमात्मा इसी तरह हमें कृपा करते रहें, और अपने भूले हुए स्वरूप को हम पुनः स्मरण करके अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकें। ये हार्दिक शुभकामना के साथ ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं, इस साल के प्रवचन श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
2: नारायण नारायण नारायण नारायण। संतों के श्री चरणों में प्रणाम। इन 28 दिनों में जो परमानंद की अनुभूति में हुई है वो केवल अनुभव कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमारे सामने एक दर्पण रख दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। संत जी कहते हैं कि ये मन में निश्चय कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या है। केवल केवल शिव ही सत्य है, केवल केवल राम ही सत्य है, केवल केवल कृष्ण ही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। यदि इस बात को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाए। मैं और कुछ अधिक नहीं कहकर ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, और जो संत हमें बताते हैं उसको हम अपने जीवन में, हम जानते तो हैं लेकिन हमारे जीवन में उतर जाए, हम उसको माने लग जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से, प्रेमपुरी आश्रम की ओर से, संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्।
1: महाराज जी ने बताया कि विदाई की माला है। महाराज जी परसों आपने बताया था कि हाय हाय करके किसी को विदा न करें, बाय बाय करें। और अंग्रेजी ऐसी है कि हाय हाय को अगर हम लिखें तो HIGH करके लिखे तो ऊंची ऊंची बातें, यानी जो वेदांत की हमने उच्चतम बातें महाराज जी से सुनी, उसके बाद उसी हाई हाई से, उसी उच्चता से उत्कर्ष के लिए, यानी महाराज जी जो जा रहे हैं यूएसए वगैरह में, तो बात हुई कि जैसे अनेक कौमों में अपनी अपनी सुंदर जगह वहां बनाई है, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वैसे महाराज जी नेपाल से आते हैं, और यह जरूरी है कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र का गौरव रहना चाहिए, और उसी के लिए कुछ न कुछ करने की एक तमन्ना, एक इच्छा और एक प्रण होना चाहिए कि जिससे मैं कुछ कर सकूं। तो महाराज जी जो वहां जा रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी हाई हाई वाली बातें, ऐसी ऊंची ऊंची बातें लेके जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल लेके जा रहे हैं उनके तिबेटी के लिए, उनके जो वहां बसे हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, वहां उनका पूरा कम्युनिटी हॉल, कुछ मंदिर है, कुछ बहुत सारी अच्छी बातें महाराज जी लेके जा रहे हैं। हम बाय बाय करते हैं आपको बड़े प्यार से कि आप अच्छी खबर लेके अगले साल आओ, और यही जैसे दक्षिणामूर्ति सूत्र हमने बहुत ही सुंदर इससे महाराज जी से ग्रहण किया, उसी प्रकार कोई और ग्रंथ से महाराज जी से हम लोग वाणी उनकी सुनेंगे अगले जून में। वही स्वाध्याय एवं प्रवचन महाराज जी का 1 से 30 जून तक होगा, जिसका हमें लाभ मिलेगा।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Nayanar Puranam, presented by Sri सिंगापुर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या शिव भक्त नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम तिरुनीलकंठ है। प्राचीन काल में तिल्लई यानी कि चिदंबरम में एक कुम्हार परिवार रहता था। नटराज शिव की कृपा से उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव के तिरुनीलकंठ नाम को रटते रहने के कारण उस कुमार बालक का असली नाम लोग भूल गए और उनका नाम तिरुनीलकंठ से ही प्रसिद्ध हो गया। उनकी मान्यता यह थी कि शिव ने अपने कंठ में विष धारण करके मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि वे उनकी विघ्न बाधाओं को सदा दूर करेंगे। उनकी युवती पत्नी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार तिरुनीलकंठ नगर में एक रात्रि व्यतीत करके प्रातः घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके बाहर रहने का कारण जानना चाहा। यह ज्ञात होने पर कि पति एक वैश्या के साथ रात व्यतीत करके आए हैं, उनके विश्वास को ठेस लगी। उसने उसी क्षण कहा, तिरुनीलकंठ की शपथ, आप अब हमें स्पर्श नहीं करना। अपनी भूल और दुर्बलता पर पश्चाताप करते हुए तिरुनीलकंठ ने कहा, तुमने हमें शब्द का प्रयोग किया है, मैं आज से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। पवित्रता की प्रतिमूर्ति पत्नी गृहस्थ के सभी दायित्वों को निर्वाह करती रही। यद्यपि उस दिन से उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, परंतु किसी के कानों में यह खबर न हुई। इस घटना के अनेकानेक वर्ष बाद एक बार एक शिव भक्त अपना भिक्षा पात्र तिरुनीलकंठर के पास धरोहर के रूप में छोड़ गए। जब वे शिव योगी विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके अपना भिक्षा पात्र लेने आए तो तिरुनीलकंठ उस पात्र को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। बदले में नवीन भिक्षा पात्र देने के आग्रह को अस्वीकार करने पर योगी ने तिरुनीलकंठ से यह कहा कि तुम चोर हो। उन पर चोरी का लांछन लगाया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तिल्लई चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों के न्यायालय में वृद्ध योगी ने कुशलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायमंडल के धर्मस्थ सदस्यों ने तिरुनीलकंठ को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। वादी के आरोपों को स्वीकार करते हुए नीलकंठ ने प्रतिवाद किया कि वे चोर नहीं है परंतु भिक्षा पात्र कहीं खो गया है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया, इन्होंने जो पात्र आपके पास थाती के रूप में रखा था वह आपसे गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि इन शिवयोगी की इच्छा के अनुसार आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस तालाब में डुबकी लगाएं और शपथ पूर्वक कहें कि आपने चोरी नहीं की है। वृद्ध तिरुनीलकंठ पत्नी के साथ साथ तालाब में उतरे। जल में डुबकी लगाने से पूर्व उन्होंने सारी सभा को पत्नी का हाथ न पकड़ने का मूल कारण रूप अपनी वैश्य गमन की घटना और पत्नी के शपथ वाक्य का प्रसंग सुनाकर स्पष्टीकरण किया। फिर एक बांस की छड़ी को पकड़े हुए वृद्ध दंपति ने जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तब तक दोनों का कायाकल्प हो गया था। दोनों नवीन यौवन की दीप्ति के से दमक रहे थे। यह उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ढूंढा तो वह वृद्ध शिवयोगी कहीं नजर नहीं आए। तभी उनको ज्ञात हुआ कि वे शिवयोगी नहीं बल्कि परंतु भगवान शिव स्वयं थे। तिरुनीलकंठ के समय में पुरुषों के का वैशाग्रह जाना एक साधारण सी घटना थी, पर तिरुनीलकंठ की पत्नी ने इसे अपने प्रेम और सेवा की अवहेलना समझा। तिरुनीलकंठ की शपथ लेकर कहा गया वाक्य वास्तव में पति के वैश्यगमन से हुए मानसिक आघात का द्योतक था। पत्नी की मर्यादा मानो खंडित हो गई हो। शिव द्वारा की गई इस लीला के मूल में तिरुनीलकंठ के पश्चाताप, त्याग भावना और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय के लिए शारीरिक मानसिक दंड की स्वीकृति थी। अपने पश्चाताप द्वारा उन्होंने जो साधना की उसे समाज में उजागर कर यह कथा भक्त के आध्यात्मिक पुनर्जन्म को वर्णन करती है, इसीलिए उनका नाम नायनमार में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: उस धीर नामक भील अपने साथियों के साथ घूमते घूमते बहुत दूर निकल पड़ा। ऐसे जगह गया जहां पर कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। परेशान हो गया, बेहोश पड़ गया। उसका साथी उसको साहस दिया, तुम यहीं बैठो, मैं पानी ढूंढ के आता हूं। वहां से वह 1.5 किलोमीटर ऊपर गया तो एक झरना बह रहा था और झरने के बाद बहुत प्राचीन एक शिवलिंग था। आकर अपने साथी को बताया, उसको उठा के वहां ले गया, झरने का पानी पिया, बैठा, उससे बहुत आनंद आया। सामने देखा एक शिवलिंग है, शिव का पिंड है। वहां जो है पूछा कि इसकी पूजा कैसे होती है, तो उसके साथी ने कहा कि मैं एक बार यहां भटकते भटकते पहुंचा था तो कोई आदमी अपने कंधे पर उसकी धागा लटक रही थी और वह एक घड़े में जल लाया और जल ला करके इस पर चढ़ा दिया। इसके बाद नया नया बिल पत्र रखा, फूल रखा और अपने हाथ से भोजन कराया, इसके बाद आरती उतार के चला गया। ऐसा सुनने के बाद वह धीर नामक भील भगवान शंकर की पूजा में वैसे ही लग गया, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसने सोचा कि मैं पानी कैसे लाऊं। तो उस भील ने अपने मुख में झरने का पानी भर लिया और अब मतलब भगवान को भोग क्या लगाएं, तो भील था इसलिए जंगल से वह जा करके खरगोश को मार के लाता था, उसको अग्नि में पका करके दाएं हाथ में पकड़ लिया। परंतु तो निर्माल्य को कैसे हटाएं, तो उसने कहा कि पैर से निर्माल्य हटाएं। तो धीर नामक भील ने मुख में तो पानी भरा और अपने पैर से निर्माल्य हटाता और सिर में अपने फूल की गुच्छा लगा लेता था। कोई बर्तन थे नहीं फूल रखने के लिए, मुख से पानी छोड़ता, सिर को हिला देता तो फूल गिर जाते। इसके बाद वह खरगोश के पके हुए मांस को खिलाता। इस प्रकार से 6 दिन तक पूजा किया। भगवान शंकर उसके शुद्ध भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर उसके उस मांस को हर दिन ग्रहण करते थे। पुजारी को बहुत क्रोध हुआ कि मैं तो हर दिन आता हूं, सफाई करता हूं, अच्छी प्रकार पूजा करता हूं, पर न जाने कौन सा ऐसा दुष्ट है कि हमारे जाने के बाद वह अशुद्ध कर देता है। भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि आप सर्वज्ञ हैं, आप उसको नष्ट कर दें जो हमारे पूजा में बाधा उपस्थित करता है, जो आपके स्थान को अपवित्र करता है। भगवान शंकर ने पुजारी को सपना दिया, सपने में समझाया, तुझसे भी वह श्रेष्ठ पुजारी है, वह मेरा प्रिय भक्त है। तुझे देखना हो तो कल तू झाड़ी में छिप कर देखना वह रात्रि को कैसे पूजा करता है। वह पुजारी ऐसा ही किया, रात्रि को छिप गया झाड़ी में और देखता है कि भील आता है और अपने पैरों से निर्माल्य को, जो पुजारी ने निर्माल्य चढ़ाया था, निर्माल्य को पैरों से हटाया और अपने मुख में जो जल भरा था उसको भगवान शंकर के पिंड पर छोड़ दिया और सिर को हिला करके पुष्प चढ़ा दिया, जो सिर में लगाए हुए थे फूल गिर जाते। इसके बाद वह पके पकाए उस खरगोश के मांस को अपने हाथों से भगवान को खिलाता था। पर उस दिन जब भगवान शंकर को खरगोश का मांस खिलाने लगा तो भगवान शंकर मुख ही न खोले और रोने लगा कि आपने जो है इतने दिनों तक जो है हमारे इस नैवेद्य को तो ग्रहण किया, आज आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आज मैं बहुत थक गया हूं, दूर जंगल में चला गया और बड़े मुश्किल से खरगोश मिला, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, हट करके बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि भगवान शंकर के बाएं आंख से रक्त की धारा बहने लगी। बहुत दुखी हो गया, उसने कहा कि रक्त धारा कैसे बह रही है, कहीं किसी ने चोट पहुंचा दिया, कोई रोग हो गया। वह रोने लगा, अंत में कहा कि कोई औषधि करनी चाहिए, अपने साथी को भेजा और जंगल से एक जड़ी बूटी लाया, उसके रस को निचोड़ करके आंख पर लगाया, पर लगाने से और रक्त धारा तेज हो गई। उसने सोचा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो उसने खुद अपने बाण से अपने आंख को निकालकर लगा दिया। लगाते ही रक्त धारा बंद हो गई। बहुत खुश हुआ कि भगवान शंकर की आंख ठीक हो गई, मेरी उपासना सफल है। पर इतने में क्या देखता है कि दाहिने नेत्र से रक्त धारा प्रवाहित हो गई। उसने सोचा कि इसमें भी लगता है कोई बीमारी है, परंतु दाहिने आंख को लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे। उसने विचार करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे से, जहां से भगवान शंकर की आंख से धारा प्रवाहित हो रही थी, वहां रख लिया चिन्ह के लिए, क्योंकि एक आंख तो मेरी चली गई, दूसरी चली जाएगी तो मैं कैसे आंख लगाऊंगा। ऐसा सोच करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान की आंख के सामने रखी और उस आंख को जैसे निकालने जा रहा था, साक्षात भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। पुजारी भी आया और पुजारी ने भगवान से क्षमा याचना किया, क्योंकि पुजारी ने भगवान से कहा था कि आप इस भक्त का सर्वनाश कर दो जो आपके स्थान को पवित्र करता है। तो देखो, भगवान भक्ति प्रिय है, उनके लिए न कुछ खाद्य है न खाद्य है, वह तो हमारी भावना को देखते हैं। इसी कथानक को भगवान शंकराचार्य ने श्लोक बद्ध भी किया है, ये तमिल भाषा में अंकित है, श्री भक्त चरित्रम नामक संस्कृत में पुस्तक है, उसका अनुवाद तमिल में है, हिंदी में तो नहीं है। तो भगवान शंकर संसार के भय को भंग करने वाले हैं, ये भांग धतूरा तो ठीक है, श्रद्धा से निवेदन करें तो, पर उसके व्यसनी नहीं। अपि श्लाघ्य, यह जो विकार है, विकार मतलब हलाहल विष का, वह भी भगवान के शोभा को बढ़ा रहा है। यह तो हमने आपको शब्दार्थ बदलाया, अब देख लीजिए इसके वाक्यार्थ को। अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवा सुर कृपा, अकांड का अर्थ है असमय में प्रलय होना, समय से कोई काम हो तो किसी को बेचैनी नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। जैसे कि वर्षा समय से हो तो सभी प्रसन्न होते हैं, बरसात के दिन में भी यदि फसल न हो तो लोग क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मतलब काल तो तब भी है, परंतु बरसात के दिनों में हरा भरा होना चाहिए, फसल होनी चाहिए, वैसा न होने से कहते हैं कि अकाल पड़ गया। जेठ के महीने में चारों तरफ सूखा होता है पर कोई नहीं कहता है कि अकाल पड़ गया, क्योंकि वह जेठ का महीना सूखा के लिए ही है। ऐसे जिस समय प्रलय होना चाहिए उस समय प्रलय हो तब तो यह उचित है, परंतु सृष्टि काल में अचानक जो है ब्रह्मांड के क्षय होने का समय उपस्थित हो गया, जैसे दिन रात प्रातः काल से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक सूर्य का की रोशनी रहती है, 6 बजे के बाद पुनः सूर्यास्त हो जाता है तो किसी को हैरानी नहीं होती है, पर किसी दिन यदि 12 बजे ही अंधेरा छा जाए तो लोग क्या कहते हैं, आज सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य में ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण के दिन आप क्या करते हैं सबको पता है। उस समय सब कुछ छोड़ करके पवित्र नदी में स्नान करते हैं। जितनी भी नदियां होती हैं, तालाब होते, उस समय उनको गंगा के समान माना गया है। तुरंत स्नान करके ग्रहण के समय आप भगवान का जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके पूर्व 12 घंटे का उपवास भी होता है। हर दिन सूर्यास्त हो रहा था 6 बजे, तो आपने कुछ नहीं मनाया, कोई हैरानी नहीं हुई। परंतु एक दिन अचानक जो है 12 बजे सूर्यास्त हो गया, 2-4 घंटे के लिए क्यों न हो, तो ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मा जी ने घोषणा किया था कि चाहे देवता हो या असुर, ये दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें। मंथन करने से अमृत निकलेगा और अमृत पान के बाद सभी अमर हो जाएंगे। इस ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर दोनों ने आपस में मैत्री की। हालांकि मैत्री संभव नहीं थी, परंतु स्वार्थ के कारण देवताओं ने बलि के पास जाकर प्रार्थना किया कि अकेले आप भी समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें और जो चीज प्राप्त होगी उसको आपस में बंटवारा कर लेंगे। बलि भी तैयार हो गए, देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किए। मंदराचल को तो मथानी बनाया, वासुकी मथाने की रस्सी बन गई। मंथन प्रारंभ हो गया, पर मंथन के बाद सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलते ही सभी बहुत परेशान हुए, सभी बेचैन हो गए, मूर्छित हो गए। जो कुछ देवता बचे वो भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु ने कहा कि इस हलाहल विष का संहार

ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ आया तब तो सीधे कैलाश आए, और कैलाश आने के बाद आपको कहते कि बीज पी लो। यदि आप बीज पी लेंगे तो हो देवता असुर तो बच जाएंगे, ब्रह्मांड बच जाएगा, पर मैं तो विधवा हो जाऊंगी। इसलिए पार्वती ने सीधा मना कर दिया, मत पीजिए, इशारा से मना कर दिया। भगवान विष्णु कह रहे महाराज आप पी लीजिए, कृपा कीजिए, जल्दी कीजिए, लोक में त्राही त्राही मचा हुआ है, अब विलंब मत कीजिए। जब इधर देखते हैं तो पार्वती जी मना कर रही हैं, उधर देखते हैं तो कह रहे महाराज पी लीजिए। भगवान शंकर ने क्या किया, कुछ हलाहल विष को वाम हस्त से ग्रहण कर लिया और अपने गले में ही रख लिया। पान शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कि गला अधो नयन व्यापार का नाम है पान। गले में जो छिद्र है उससे अधमल्ल नीचे ले जाने को पान कहते हैं। तो भगवान विष्णु की बात रख ली, उस विष को गला के अंदर तो रख लिया, और पार्वती ने कहा था मत पीजिए तो उसको नीचे नहीं उतारा, गले में रख लिया हलाल विष को, जिससे कि देवताओं के असुरों की रक्षा हुई, अकांड प्रलय से बचाव हो गया। ऐसे हमारे जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं, कोई भी काम करें, तो निश्चित ही हलाहल विष, हलाहल विष का मतलब है दुख। ये जो हमारे जीवन का दुख है, या दुख ही समझो हलाहल विष है। बंबई में सारे लोग आते हैं धन कमाने के लिए, परंतु अभी 27-28 नवंबर को हलाल बीस निकला, सभी आए थे धन कमाने, अमन चैन से जीवन यापन करने, परंतु ऐसा हलाल बीस निकला कि जो बम के विस्फोट से पूरी बंबई गूंज गई, त्राही त्राही मच गई। तो हमारे जीवन में भी ये देवासुर संग्राम चलता है। अमृत तो बाद में उपलब्ध होगा, पहले हलाहल ही दुख ही आता है, और जब दुख आता है तब जाकर वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तो आप इतिहास या पुराण या वेद उपनिषद सब कुछ देख लीजिए, सीधा उत्तर जाता है मनुष्य, दक्षिण भारत की यात्रा कोई नहीं करता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंदाचार्य, ये सारे आचार्य उत्पन्न हुए दक्षिण भारत में, वल्लभ भी, निम्बारक भी, और अपने शंकराचार्य भगवान भी सभी, परंतु यात्रा किया उत्तर भारत की, कैलाश की, हिमालय की। तो जब भी किसी को विषाद होता है, दुख होता है, हलाल से परेशान होता है, हम लोग किसी दिन यदि जरा सा छोले भटूरे कुछ खा ले ना गर्म चीज, तो रात को सोने के बाद देखो जब पित्त बनता है तो कैसे जलन होती है, परेशान हो जाते हैं, तो वह तो हलाहल विष था। जब हलाहल विष रूपी दुख आए तो हमें भी यात्रा कहां करनी चाहिए, विचार कर लो, कैलाश की, क्योंकि यत्र शंभो नित्यम राजते, जहां पर भगवान शंकर हमेशा उमा के साथ विराजमान रहते हैं, वह है कैलाश। परंतु स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज, उस कैलाश को आपको यहीं बसा दिया है, ये दूर नहीं है। कैलाश शब्द का अर्थ है कई गई शब्दे, ये धातु है, कई और गई दो धातु है, इस शब्द अर्थ में है, कई गई शब्दे धातु है, और रलयोर अभेद, रकार लकार का अभेद है। तो कई मतलब कि शब्दे, शब्दे का अर्थ है शब्दात्मक जो वेद है, जो उपनिषद है, जो भागवत है, और लास का अर्थ है रास, रलयोर अभेद है ना, और रस एव रास स्वार्थिक प्रत्यय है, और रस शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, रसो वैश, उपनिषद में आता है रसो वैश, जीवन का रस सार तो आत्मा ही है,

तो जब हम शब्दात्मक वेद का, वेदांत का, भागवत का, रामायण का जब श्रवण करते हैं स्वाध्याय के द्वारा या प्रवचन के द्वारा, तो साक्षात भगवान शंकर की जो साक्षात आत्मा है उनकी अनुभूति होती है। तो जब भी आपको अपने घर में, व्यापार में, बिजनेस में, धंधा में ये हलाहल 20 रूपये दुख हो ना, तो आप कहाँ यात्रा करना है? प्रेमपुरी, क्योंकि यही कैलाश है। और इस कैलाश में यात्रा करेंगे तो निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। जब देवताओं को, असुरों को समाधान नहीं मिला तो कैलाश पर गए, वहां पर जाते भगवान शंकर ने समाधान किया। इसके बाद जब आप मंथन करते जाएंगे तो फिर क्रम से लक्ष्मी भी मिलेगी, एरावत हाथी भी आएगा और अंत में अमृत कलश भी उपलब्ध होगा। लक्ष्मी बोलते धन को, एरावत हाथी मन लें कि जो आप गाड़ी चाहते हैं ना, हमारे चलने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वाहन होना चाहिए, वह भी उपलब्ध होगा। परंतु जब हमारे जीवन में हलाहल रूपी विषाद आए तो उस विषाद को हम संवाद में परिणत करें। जब संवाद में परिणत करेंगे तब जाकर के गीता का प्रसाद, भागवत का प्रसाद उपलब्ध होगा। कभी भी अमृत का स्यंदन विषाद से ही होता है। जैसे बर्फ बहुत कठोर है, वह कठोर बर्फ भी अग्नि से पिघलता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज के महात्म्य कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख शब्द का अर्थ है शोक, सुख सोचे धातु है, मुख बोलते हैं द्वार को। तो जब हमारे जीवन में सुख होता है, शोक विषाद होता है, तब जाकर के जो घनीभूत अमृत है उसमें स्यंदन श्राव होता है। जैसे कि कठोर बर्फ को आप पी नहीं सकते, अपने प्यास को बुझाना हो तो कठोर बर्फ को, आजकल के दिनों में दिसंबर जनवरी फरवरी में गंगोत्री में जो लोग रहते हैं उस बर्फ को अग्नि पर तपा करके तब जाकर प्यास बुझाते हैं। जब इधर परीक्षित महाराज को शोक हुआ कि सातवें दिन मैं मौत का ग्रास हो जाऊंगा, वैसे ही विषाद हुआ। विषाद के बाद सुखदेव से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा अमृत का श्राव हुआ। तो हमारे जीवन में जब दुख हो, समस्या आए, तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब जो है जो अमृत जो घनीभूत है उसमें श्राव होने वाला है। तो यहां पर भी ये जो ऐतिहासिक विषय बतलाया कि देवताओं ने जब सागर का मंथन किया, मंथन से हलाहल हुआ और अंत में अमृत उपलब्ध हुआ। या मोक्ष ही अमृत है। सात्विक राजस वृत्तियां ही दैवासुर है। सबके अंतःकरण में कभी सात्विक वृत्ति होती है, कभी राजस, कभी तामस, और आपस में संग्राम चलता रहता है। इस संग्राम से कई बार आप जीतते भी हैं, कई बार हारते भी हैं। परंतु इस संग्राम में यदि आप इस संसार के बीच के द्वारा वैराग्य को उपलब्ध होंगे, क्योंकि वैराग्य हमारे मोक्ष का प्रथम पाथेय है, प्रथम पायदान है। जैसे कि छत पर पहुंचने के लिए प्रथम पायदान होती है, वैसे ही हमारे जीवन को सफल बनाने का सबसे प्रथम पायदान है विषाद। विषाद बीज है वैराग्य का। भगवान शंकराचार्य जब वैराग्य का लक्षण गीता भाष्य में करते हैं तो वहां कहते हैं कि विषयेषु दोष दर्शनम वैराग्यम। जब आप विषय में दोष दर्शन होने लगे तो अपने आप मन वहां से हट जाता है, वैराग्य हो जाता है। किसी को आप बहुत सुंदर माने, अपना विश्वस्त पात्र माने, पर किसी ने आपको कानाफूसी कर दिया कि आपको पता नहीं आपके पीछे बहुत बुरा

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

बोधि तनूकृत तनूकृद्बोधि तनूकृदिति तनूकृत बोधि प्रमतिश्च च प्रमतिर्बोधि बोधि प्रमतिः प्रमतिश्च प्रमतिरिति प्रमतिः।

ओपिषे ऊपिष इत्यूपिषे ओम ओम आध्रस्य चित चिदाध्रस्य आध्रस्य चित चित्प्रमतिरुच्यसे उच्यसे प्रमतिश्चित चित्प्रमतिः प्रमतिरुच्यसे प्रमतिरिति प्रमतिः उच्यसे पिता प्रपाकम्।

0: इति अष्टादशोऽध्यायः। ॐ
1: ॐ नमः शिवाय। यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ॐ नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program you are about to listen is Spiritual Discourse. Title is Akshara Manamalai, presented by Sri Nochur Venkatraman. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Shiva அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம்

0: वर्तते अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात देयर इज नो रिटर्न आफ्टर दैट सो दैट्स हाउ इट एंड्स एंड थैंक यू इट वाज रियली ग्रेट डिस्कसिंग दिस एपिसोड ऑफ उपमन्यु व्हिच हैज बीन लाइक फॉर टू मंथ्स आई हैव गॉट अ चांस यू नो आई थैंक उपमन्यु महर्षि फॉर दिस एंड ऑल्सो पराशक्ति एंड परमशिव And also, I thank you guys, you know, for listening to this. Everything is uploaded to YouTube. You can listen. There is also a playlist on Upamanyu Maharshi.
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हर ओम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: करता है कोई कह दे दुर्गंध आ रहा है तो उसको पहले भांग ना भी हो ना तो सावधानी पूर्वक फिर नाक श्वास खींच कर मैंने तो खबर न थी पड़तो करता है। हाँ हाँ छे छे गंध छे दुर्गंध छे सुगंध छे है ना। तो बराह भगवान ने सू सू करके ही खोजा था पृथ्वी को, क्योंकि ग्राण इंद्रिय के साथ पृथ्वी का संबंध है प्रगंधवती पृथ्वी। तो तभी ग्राण इंद्रिय का प्रयोग न किया होता तो शायद बराह भगवान को पृथ्वी खोजना मुश्किल पड़ता। तो उन्होंने ग्राण इंद्रिय का प्रयोग किया, लिया अपने नाक, इसीलिए नाक बड़ा किया बराह अवतार का। कितना बड़ा नाक बा, तो कोई अच्छा काम करते हैं तो व्यक्ति भी नाक बड़ा कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है, वही होता है शुकर। तो अहंकार अभिमान से नाक बड़ा कर लेता है ना, तो वो सुख रही है और कुछ नहीं है। कर्तृत्व अभिमान से नाक बड़ा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन करता जीव भाव है उसमें। यदि उस विष्ठा में भोजनत्व तो न होता तो वो उसके प्रति अनुरक्त क्यों होता है, इसका मतलब भोजनत्व का बात नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हृदय स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। होती है, भोजनत्व विद्यमान होने पर भी उसको भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि कदाचित खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कहो, जैसे गुजराती लोग करते हैं, शाम का भात बच गया तो सुबह मुठिया बना देते हैं, करते हैं कि नहीं, दाल ढोकली बना देंगे, चक्या बनाएंगे, कुछ न कुछ बनाते हैं, शाम को बचा हुआ कुछ है तो सुबह कुछ दूसरे रूप। अब खुदा ने खास कर गुजराती के बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, अब गुजराती तो भात को मुठिया बना देते हैं, खुदा ने खास कर कोई नेपाली हो तो उसी विष्ठा को मुठिया बना के सामने रख दे दूसरे थाल में, तो एक चाह सू छे तो कहा मुठियो छे मुठियो, इसके अंदर देख ले तो जब खाएगा पता चलेगा मुठियो क्या है। तो भोजनत्व का बात नहीं हुआ, लेकिन स्वीकार करने की बात है, जिसका को कोई भी मनुष्य भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता।

इसीलिए जहाँ वो स्वीकार कर सकता है उसी को ही उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए सर्व रूप को परमात्मा शिव के रूप में कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। तब फिर शंकराचार्य जी ने, कालिदास ने, पुष्पदंताचार्य जी ने, आचार्यों ने मिलकर आठ स्वरूप को ही शिव के रूप में प्रस्तुत किया, अष्टमूर्ति। जैसे दर्पण मिरर भी पार्थिव है और दीवार भी पार्थिव है, दोनों पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है, पृथ्वी का परिणाम है, लेकिन दीवार में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है और मिरर में, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार के यूं तो सभी जगत के जितने भी पदार्थ हैं, परमाणु से लेकर सुमेरु पर्यंत, सब के सब पदार्थ शिव स्वरूप ही हैं, शिव ही है, शिव स्वरूप ही है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। तब कहा कि इन आठ स्वरूप में शिव की भावना करो। भोरम भाज चनलो नीलो अम्बर महर नाथो इमां सुपमा इत्या भाति चरा चरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम। सारा चर अचर, सारा विश्व ब्रह्मांड यही आठ स्वरूप से व्याप्त है। सूर्य भगवान शिव का प्रत्यक्ष, तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि है, गणपति अथर्व शीर्ष में पाठ करते हो कि नहीं? तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप लोग कहते हो कि महाराज आपको परमात्मा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं तुमको सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं है? सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो वही तो भगवान है, और कौन सा भगवान खोज रहे हो तुम? उसको प्रत्यक्ष दिखते हुए सूर्य को परमात्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पाते हो तो फिर परमात्मा का अनुभव तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। पृथ्वी प्रत्यक्ष दिख रही है, अनुभव में आ रहा है, उसको तुम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो शायद परमात्मा का अनुभव कभी भी नहीं कर पाओगे। जल है भोरा अम्बांसी, अनला तेज है, अग्नि है, यही तो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अनिला वायु और अंबर आकाश, हिमांश अहरनाथ हिमांशु चंद्रमा, अहरनाथ सूर्य, पुमान ये सब यजमान मूर्ति, जीवात्मा जितनी भी हैं यही सब यजमान मूर्ति हैं। इत्याभाति चराचरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभो। मैं जब विचार करता हूं तो उस परमात्मा के अलावा दूसरा पदार्थ प्रतीत होता ही नहीं है। ऐसा होता हुआ भी माया परिभ्रामितः उस परमात्मा का तो भान नहीं होता, खाली जगत नाम रूप का भान होता है। कहता है कि कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, सब विरोचन होके बैठ गए हैं, सब विरोचन हो गए हैं, उसी के हृदय में छुप कर बैठे हैं भगवान, और विरोचन खोजता फिर रहा है भाई कुंठ पाताल स्वर्ग और पाताल मर्त्य लोक में, कहाँ गया, मेरे से डर के मारे भाग गया, मर गया, खत्म हो गया, है नहीं पृथ्वी में परमात्मा, हमने सारे तीनों लोक खोज डाला, कहीं नहीं है परमात्मा, निश्चिंत होकर बैठ गया वो, क्योंकि खोज कहाँ रहा है वो, बाहर खोज रहा है। और जबकि बाहर भी वही परमात्मा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और जो मानने को तैयार नहीं है तो परमात्मा कहाँ से प्रकट होगा। संत मेनम ततो विदो असत ब्रह्मेति चेत वेद असत एव भवति। जो परमात्मा नहीं है कहता है, परमात्मा की सत्ता का निषेध करता है, वह भी सत्ताहीन होकर उस स्वयं निषिद्ध हो जाता है, और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संत मेनम ततो विदो। जिसने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तो वो परमात्मा के अनुभव कर सकता है। ये सब साधन और साध्य का स्वरूप का वर्णन हो गया है। एक श्लोक से लेकर आठ श्लोक तक साध्य के स्वरूप का वर्णन किया है, और नौवां श्लोक
उस साध्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बता दिया है कि उसी की उपासना से उसी को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो दसवां श्लोक है फलश्रुति है। वेदांत श्रवण करने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनने का क्या फल है, विचार करने का क्या फल है, पाठ करने का क्या फल है, क्या फायदा? हमको ये वाक्य याद आ जाता है, बहुत पहले प्रेम कुटीर में कथा करते थे नियमित रूप में, जैसे अभी प्रेमपुरी में कर ही रहे हैं, तभी से ही प्रेमपुरी और प्रेम कुटीर वहां मई महीना करते थे या जून महीना, वहां पूरा करते हम यहां आते थे। अप्रैल में विश्वदान जी करते थे प्रेम कुटीर में, विश्वदान जी प्रेम कुटीर पूरा करके प्रेमपुरी आते थे मई में, और हम प्रेम कुटीर जाते थे, फिर विश्वदान जी यहां मई में यहां करके फिर अहमदाबाद जाते थे, और हम फिर जून में यहां आते थे। तो वहां हम कथा कर रहे थे तो एक सज्जन आके, काफी होता है ना राम नाम लिखने का, बांटने लग गए श्रोताओं के बीच में, राजस्थान से आए थे वो, और हमें कुछ कॉपी रखी गए ताकि महाराज और कुछ है उनको दे देना, राम नाम लिख कर रखें और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम गए, हम राम नाम मंत्र बैंक हमने खोल रखा है, हमने कहा ठीक है। तो एक बहन आई, हमने दिया उसको, ले लिख लो राम नाम लिख लो कॉपी पूरा भर के ले आना, कॉपी और पेन दोनों चीज दिया। महाराज ये राम नाम लिखने का क्या फायदा होगा, फट से प्रश्न कर लिया उन्होंने, और हमारे मुख से फट से उत्तर निकला बेफायदा होगा। क्या फायदा होगा तो फिर बेफायदा होगा, और क्या फायदा होना है? अरे भाई तुम जिसको फायदा समझ रहे हो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, तुम इससे फायदा, तुम्हारे दृष्टि में फायदा किसको कहते हैं? शरीर में रोग होगा तो रोग चला जावे उसको तुम लाभ कहोगे? तो धन है तो कहीं लगाया हुआ तो वो धन उसका 10 दुगना होकर तुम्हें वापस आ जाए, तुम उसको फायदा कहोगे? है बेटा यदि पढ़कर डिग्री लेके आवे तो उसको तुम फायदा कहोगे? ये सब लोग संसार के लोग इसी को ना फायदा मानते हैं। हमने कहा इसको पूरा कप लिखोगे तो बेफायदा होगा। वो क्या होता है महाराज बेफायदा, हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो ये संसार तो चित्त के बिगड़ेलपना के काम से संसार उपलब्ध होता है। चित्त जब तक बिगड़ेगा, बिगड़ा रहेगा, तभी तक ये संसार के सब ठीक ठाक रहेंगे, और चित्त यदि ठीक हो जावे तो फिर ये चित्त ये संसार चला जाएगा। और तुम पूरी तरह निष्ठा से ये राम नाम लिखोगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक है, मैं तो यथार्थ साधु की भाषा में व्याख्या करती, तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा। और शायद इसी को तुम लोग कहते हो बेफायदा, संसार बिगड़ जाना तुम लोग बेफायदा कहते हो, और हम कहते हैं कि संसार बिगड़ जाना सबसे बड़ा फायदा है कि नहीं बोलो? आत्मलाभ इस दक्षिणामूर्ति के मानसोल्लास सुरेश्वराचार्य जी के पहले ही श्लोक है, आत्मलाभात परो लाभो नास्ति कवयो विदुः तल्लाभार्थम कवि स्तौति स्वात्मानम परमेश्वर। आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं, और उसके आत्मलाभ के मूल साधन यही है कि भगवत चिंतन करो, नाम स्मरण करो, सत्संग करो, उसी से आत्मलाभ है। और तुम्हारे दृष्टि में तो ये बेफायदा हुआ कि नहीं, और हमारे दृष्टि में यही सबसे बड़ा लाभ है, आत्म उपलब्धि, चित्त शुद्धि। ये जो है यहाँ फलश्रुति सुनाया जा रहा है, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं

0: ఏకనాథ్ సర్వాత్మత్వమహాభిభూతి సహితం సాదీశ్వరత్వం స్వతః సిద్ధి తత్పునరస్తథా పరిణతం ఐశ్వర్యమవ్యాహతం. ఫైదా హీ ఫైదా, లాభ హీ లాభ హై. ఏ తో ఔర్ భీ సుందర బాత్ కహ రహే హై. హమ్నే తో థోడా ఖతర్నాక్ బాత్ కహి దియా థా, బేఫాయిదా హోగా, సంసార్ బిగడ్ జాయేగా. ఏ తో వో భీ నహీ కహ రహే హై. బడే దయాలు హై శంకరాచార్య జీ, బడే కృపాలు హై. సంసార్ కే జీవ ఘబరా జాయేంగే, బేఫాయిదా హోగా కహ దేంగే. తో ఆత్మానంద్ తుమ్నే గలత్ కహి దియా, ఐసా నహీ కహనా. బహుత్ ఫాయిదా హోగా కహనా చాహియే, తభీ వహ ఉస్మే రుచి హోగి, తభీ ప్రవృత్త హోంగే, నహీ తో తో ఘబరా జాయేంగే. దేహాధ్యాస చూట్ జాయేగా, ఘబరా జాయేంగే. దేహాధ్యాస చూట్ జాయేగా తో ఫిర్ ఖానా భీ చూట్ జాయేగా, బోలే హాన్ చూట్ జాయేగా. తబ్ తో ఫిర్ శ్వాస లేనా భీ చూట్ జాయేగా, బోలే హాన్ చూట్ జాయేగా. తబ్ తో కైసే బేకార్ హై తుమ్హారా వేదాంత నహీ చాహియే. సబ్ ఖులే రూప్ మే సీధే కహ దేంగే, తుమ్హారా వేదాంత హమే నహీ చాహియే. यहां कह रहे हैं बड़ा सुंदर, क्योंकि सर्वात्मा भाव से संबंधित ये स्तोत्र है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र. सब कुछ परमात्मा है, इस भाव को सिद्ध करने के लिए. अस्थिभाति प्रियम चैव नाम रूपम च पंचमम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम. अस्थिभाति प्रिय, इस तीन स्वरूप के माध्यम से सारे के सारे जगत में यही तीन भाव विद्यमान होने के कारण यही सर्वात्म भाव है परमात्मा की. परमात्मा के सर्वात्म भाव को प्रकट करने वाला यह स्तोत्र है. सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे. इस स्तोत्र में, दक्षिणामूर्ति के ये स्तोत्र में सर्वात्म भाव को प्रकट करने के सारे विचार व्यक्त किए गए हैं. तेना, इसी कारण से अस्य स्तवे, यह स्तोत्र का तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्. चार चीज शंकराचार्य जी ने यहां रख दिया क्रम से. पहले क्या किया, स्तोत्र का ठीक से श्रवण कर लो. तेनास्य श्रवण, अस्य श्रवणात्, स्तोत्र से श्रवणात्, इस स्तोत्र के ठीक से श्रवण करने से. खाली श्रवण मात्र से नहीं, मननात्, क्योंकि श्रवण के बाद मनन है. आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्यो निधिधाषितव्य, श्रुति का वाक्य क्रम से है. ये श्रवण के बाद मन, एक घंटा श्रवण करो तो शास्त्र ने लिखा है, एक घंटा यदि तुम श्रवण करते हो तो 100 घंटा मनन करनी चाहिए. और हम लोग केवल श्रवण करते हैं, मनन नहीं करते, इसलिए सुने सुने पाके कान, तो ना आया ब्रह्म ज्ञान. क्योंकि हम मनन नहीं करते हैं, इसलिए श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते कान पक जाते हैं. हमने श्रवण को इति कर्तव्यता मान ली. मनन में हमारी गति नहीं है, प्रवेश नहीं है. तेनास्य श्रवणात्, श्रवणात् सतगुणम, 100 गुणा मनन करना चाहिए. और मनन से 1000 गुणा निधिध्यासन करनी चाहिए. हमको लगता है कि निधिध्यासन के तो हम 100 में 1 पॉइंट भी, उस निधिध्यासन की भूमिका को हम छू ही नहीं पा रहे. मनन की भूमिका में कदाचित कोई बैठा हो, प्रवेश कर लिया हो 1 पॉइंट, जितना श्रवण किया है उसके 1 अंश, 100 में से 1 अंश कोई मनन कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन निधिध्यासन की भूमिका में तो हम प्रवेश ही नहीं कर पाए हुए हैं. तेनाश श्रवणा तथार्थ मनना ध्यानाच, यहां जो ध्यान शब्द कहा गया है वह निधिध्यासन के लिए यह ध्यान शब्द, क्योंकि वेदांत में जो ध्यान शब्द है वह निधिध्यासन के लिए ही आता है. चित्त वृत्ति निरोध का नाम वेदांत को ध्यान में इष्ट नहीं है. चित्त वृत्ति बने रहे चित्त वृत्ति से एकमात्र परमात्मा भाव बना रहे और उसी निष्ठा में एक प्रवाह मनन में विरोधाभास परिहार आदि होता है, उसके बाद निश्चित अर्थ किया गया जो निष्कर्ष है उसी में चित्त टिका रहे, उसी भाव में, उसी को निधिध्यासन कहते हैं और उसी को ध्यान कहते हैं और उसी का फल होता है धर्म मेघ समाधि, जो कि पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने कहा है, उसका नाम है धर्म मेघ समाधि। वर्षत्येष सहस्र सर हजारों धर्म मेघ, मान लो कि साक्षात वह अमृत का वर्षा, अमृत की वर्षा होती है, मान लो कल्पना कर। अनेन विलयम याति ही जन्म जन्मांतर कृत जितने भी संचित कर्म हैं उस धर्म मेघ समाधि से सब विलय प्राप्त हो जाते हैं, पंचदशी में कहा गया। इसलिए यहाँ कहा तेनास्य श्रवणात् तथा अर्थ मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्, उसके बाद निधिध्यासन हो और फुर्सत मिले तो अपनी अनुभूति को दूसरों को भी सुनाओ, संकीर्तनात् तुम भी गाओ, मस्ती से गाओ। दुनिया की चर्चा करने की अपेक्षा तो इन्हीं स्तोत्रों को गुनगुनाओ, गुनगुनाते रहो और क्या करोगे, बोलने का वादा किया है तो सदा गुनगुनाते रहना। तुम लोग तो बोलने का वादा है ही नहीं है, बोलने का वादा किया है तो क्या करोगे, वादा नहीं किया इसलिए बोलते रहोगे और क्या, गुनगुनाओ, बोलने की वादा करो, मौन हो जाओ और इसका गुनगुनाओ, संकीर्तना सुनाओ, अभ्यास बढ़ता है, सुने हुए को दूसरे को सुनाओ तो अभ्यास बढ़ता है। हम लोग पढ़ते समय में पढ़ते थे, क्लास के बाहर निकले, फिर बाहर बैठे, क्लास के सभी साथी लोग बैठते थे, फिर डिस्कशन शुरू करते थे, इसका क्या अर्थ हुआ है, तो उसने जो समझा वो बताएगा, हमने जो समझा उसको बताएंगे, उससे छूटा हुआ है हमसे वो कवर कर लेगा, हमसे छूटा हुआ है वो उससे शेयर कर लेगा, इस तरह हम लोग परस्पर बैठकर मनन करते थे, विचार करते थे। संकीर्तन सुनी हुए को सुनाओ। सर्वात्मत्व महाविभूति सहित, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम सर्वात्मत्व भाव की प्राप्ति उसको भी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में सारे ऐश्वर्य भाव विद्यमान है, सर्वैश्वर्य भाव है ना परमात्मा में, उसी को कहा महाविभूति सहितम, क्योंकि परमात्मा भाव की प्राप्ति होगा तो परमात्मा में जो ऐश्वर्यता है, भगवत्ता है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से स्त्रीय ज्ञान वैराग्य चैव शरणाम भग इतिना, वो सारे ऐश्वर्य उस श्रवण करता, मनन करता, निधिध्यासन करता को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्वतः प्राप्त हो जाएगा मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसका तो वो स्वरूप है ही है, उसके लिए कुछ उत्सर्ग करने की जरूरत नहीं है, वो तो आगंतुक जो नैसर्गिक है उनको हटाना है बस, उपाधियों को हटाना है, भ्रांति को हटाना है, भ्रांति को हटते ही उसका ये सारा का सारा भाव तो परमात्मा के सर्वात्म भाव तो उसका स्वरूप ही है, इसलिए स्वतः अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः, उसकी ईश्वरता परमात्मा भाव वो स्वतः सिद्ध है। सिद्धे तत् पुनरस्तदा, लियो जी डरना नहीं, क्या फायदा है तो तुम जिसको फायदा कहते हो ना वो भी तुम्हें मिलने वाला है। पुनः सदा सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बोलते हो ना परमात्मा को, क्या बोलते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, और सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाएगा तुम्हें तो वो अष्ट सिद्धि नव निधि तुम्हारी अपने चरण में अपने आप आ जाएगी कि नहीं है, तो तुमको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और तुम कृपा करके और को दे सकोगे, अभी तक तुम भिखारी थे अब मालिक हो जाओगे, देने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपना सर्वात्मा भाव प्रकट हो गया है। सिद्धे तद पुनरस्तदा अणिमा लगिमा प्राप्य प्राकाम्य इसित्व वसित्व, ये सारे भाव तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। वो भारी को हल्का कर देना, हल्के को भारी बना देना, यही तो ये अष्ट सिद्धि के अंतर्गत है। और ये आपकी शक्ति क्षमता है कि भारी को हल्का बना रहे हो, है कि नहीं? नहीं तो 75-80 किलो वजन लेकर चलना संभव था? है 80 किलो वजन कौन लेकर चल रहा है? कम है 80 किलो वजन ढोकर चलना? ये तुम्हारी सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धि की एक सिद्धि है। ये बड़े भारी को हल्का करके तुम्हारे स्पर्श होते ही इतना भारी भरकम शरीर, 80 किलो वजन एक फूल की तरह तुमको भान ही नहीं हो रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं। भान हो रहा है? बोलो, क्या तुम्हारी सिद्धि का फल है कि नहीं? ये परमात्मा भाव है कि नहीं? बोलो, अणिमा लघिमा प्राप्य प्राकाम्य, देख लो। अणिमा यह है कि तुम नख से लेकर शिख पर्यंत ये पंचभूतात्मक शरीर के एक एक अंग अंग में व्याप्त हो। व्याप्त हो कि नहीं? यही तुम्हारी व्यापकता है। अणु अणु में पहुंचे हुए हो, रग रग में पहुंचे हो, ये तुम्हारी यही तो सिद्धि है। तुम कहां नहीं हो, पूरे पिंड में व्याप्त हो गए हो, तो कम तुम्हारी सिद्धि है ये। अणु रणीयान महतो महीयान, अणु से अणु यह है कि तुम हिता नाम के नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो। 72 करोड़ नाड़ी कितनी सूक्ष्म होंगे, 100 नाड़ी का 72 करोड़ बालाग्र शतभाग का। तुम्हारी जो मुख्य नाड़ी है बाल के अग्रभाग के जो नोक है, इतनी बारीक तो तुम्हारे मुख्य नाड़ी है, उनका 72 करोड़ भाग हुआ है। यानी कितनी सूक्ष्म की कल्पना कर लो, और उसके अंदर तुम विचरण कर रहे हो, आराम से घूम रहे हो, तो कितनी सूक्ष्म हो, अणु हो, और इतनी महान हो कि नख से लेकर शिख पर्यंत तुम व्याप्त भी हो। अणु रणियान महतो मयान, ये सब अष्ट सिद्धि स्वतः प्रकट हो जाता है, तो परिच्छिन्नता भाव समाप्त हो जाता है, दासता भाव समाप्त हो जाती है, दीनहीन भाव समाप्त हो जाता है, परम संतुष्टि की प्राप्ति स्वराट भवती। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, स्वराट भवती। वो तो अपने आप राजा हो जाता है, सम्राट हो जाता है, और क्या। पिंड का राजा हो जाना ही ब्रह्मांड का राजा है भाई। तुम ठीक से पिंड का राजा नहीं बनते हो, इसलिए ब्रह्मांड के दास बनकर घूम रहे हो। सिद्धि तत् पुनरस्तदा परिणतम ऐश्वर्य अव्याहतम, बिना रोके सारे ऐश्वर्य तुम्हारे आधीन हो जाएगा। अमानव पुरुष तुम्हें तो स्वागत करने के लिए आएंगे, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय में चल रहा है ना, यही आओ आओ, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये स्तोत्र पाठ की फलश्रुति के साथ साथ ही आज ये 28 दिवसीय दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रवचन श्रृंखला को यही पूरा करते हैं, और आज ही हम फिर शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं बहुत दूर, 7 समुद्र पार यूएसए जा रहे हैं, रात की फ्लाइट है, तो इसलिए 2 दिन हम इस बार से ये प्रवचन की श्रृंखला के अंतर्गत 30 तारीख तक के क्रम को 2 दिन पहले विराम करते हुए हम जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था, आगे की व्यवस्था समिति संचालक आश्रम संचालक के हैं, वे लोग सब कर रहे हैं, और कल से फिर सारी व्यवस्था होगी। तो आशा है कि ये सत्संग इसी तरह चलता रहे, किसी न किसी प्रकरणों के माध्यम से हम वेदांत के रहस्यों को समझें, और परमात्मा के साथ हमारी भावना जुड़ी रहे, और परमात्मा इसी तरह हमें कृपा करते रहें, और अपने भूले हुए स्वरूप को हम पुनः स्मरण करके अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकें। ये हार्दिक शुभकामना के साथ ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं, इस साल के प्रवचन श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
1: पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
2: नारायण नारायण नारायण नारायण। संतों के श्री चरणों में प्रणाम। इन 28 दिनों में जो परमानंद की अनुभूति में हुई है वो केवल अनुभव कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमारे सामने एक दर्शन रख दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। संत जी कहते हैं कि ये मन में निश्चय कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या है। केवल केवल शिव ही सत्य है, केवल केवल राम ही सत्य है, केवल केवल कृष्ण ही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। यदि इस बात को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाए। मैं और कुछ अधिक नहीं कहकर ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और जो संत हमें बताते हैं उसको हम अपने जीवन में, हम जानते तो हैं लेकिन हमारे जीवन में उतर जाए, हम उसको माने लग जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से प्रेमपुरी आश्रम की ओर से संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं।
0: महाराज जी ने बताया कि हृदय की माला है। महाराज जी परसों आपने बताया था कि हाय हाय करके किसी को विदा न करे, बाय बाय करे। और अंग्रेजी ऐसी है कि हाय हाय को अगर हम लिखें तो HIGH करके लिखें तो ऊंची ऊंची बातें, यानी जो वेदांत की हमने उच्चतम बातें महाराज जी से सुनी उसके बाद उसी हाय हाय से, उसी उच्चता से उत्कर्ष के लिए, यानी महाराज जी जो जा रहे हैं USA वगैरह में, तो बात हुई कि जैसे अनेक कौमों में अपनी अपनी सुंदर जगह वहां बनाई है, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वैसे महाराज जी नेपाल से आते हैं। और यह जरूरी है कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र का गौरव रहना चाहिए और उसी के लिए कुछ न कुछ करने की एक तमन्ना, एक इच्छा और एक प्रण होना चाहिए कि जिससे मैं कुछ कर सकूं। तो महाराज जी जो वहां जा रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी हाय हाय वाली बातें, ऐसी ऊंची ऊंची बातें लेके जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल लेके जा रहे हैं उनके तिबेटी के लिए, उनके जो वहां बसे हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, वहाँ उनका पूरा कम्युनिटी हॉल, कुछ मंदिर है, कुछ बहुत सारी अच्छी बातें महाराज जी लेके जा रहे हैं। हम बाय बाय करते हैं आपको बड़े प्यार से कि आप अच्छी खबर लेके अगले साल आओ। और यही जैसे दक्षिणामूर्ति सूत्र हमने बहुत ही सुंदर इससे महाराज जी से ग्रहण किया, उसी प्रकार कोई और क्रम से महाराज जी से हम लोग वाणी इनकी सुनेंगे अगले जून में। वही स्वाध्याय एवं प्रवचन महाराज जी का 1 से 30 जून तक होगा जिसका हमें लाभ मिलेगा।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
4: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Shiv Bhakt Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Thirunilakanta hai. प्राचीन काल में तिल्लई यानी कि चिदंबरम में एक कुम्हार परिवार रहता था। नटराज शिव की कृपा से उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव के तिर नीलकंठ नाम को रटते रहने के कारण उस कुमार बालक का असली नाम लोग भूल गए और उनका नाम तिर नीलकंठ से ही प्रसिद्ध हो गया। उनकी मान्यता यह थी कि शिव ने अपने कंठ में विष धारण करके मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि वे उनकी विघ्न बाधाओं को सदा दूर करेंगे। उनकी युवती पत्नी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार तिरुनीलकंठ नगर में एक रात्रि व्यतीत करके प्रातः घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके बाहर रहने का कारण जानना चाहा। यह ज्ञात होने पर कि पति एक वैश्या के साथ रात व्यतीत करके आए हैं, उनके विश्वास को ठेस लगी। उसने उसी क्षण कहा, तिरुनीलकंठ की शपथ, आप अब हमें स्पर्श नहीं करना। अपनी भूल और दुर्बलता पर पश्चाताप करते हुए तिरुनीलकंठ ने कहा, तुमने हमें शब्द का प्रयोग किया है, मैं आज से किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। पवित्रता की प्रतिमूर्ति पत्नी गृहस्थ के सभी दायित्वों को निर्वाह करती रही। यद्यपि उस दिन से उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, परंतु किसी के कानों में यह खबर न हुई। इस घटना के अनेकानेक वर्ष बाद एक बार एक शिव भक्त अपना भिक्षा पात्र तिरुनीलकंठ के पास धरोहर के रूप में छोड़ गए। जब वे शिव योगी विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके अपना भिक्षा पात्र लेने आए तो तिरुनीलकंठ उस पात्र को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। बदले में नवीन भिक्षा पात्र देने के आग्रह को अस्वीकार करने पर योगी ने तिरुनीलकंठ से यह कहा कि तुम चोर हो। उन पर चोरी का लांछन लगाया। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तिल्लई चिदम्बरम निवासी ब्राह्मणों के न्यायालय में वृद्ध योगी ने कुशलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायमंडल के धर्मस्थ सदस्यों ने तिरुनीलकंठ को बुलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। वादी के आरोपों को स्वीकार करते हुए तिरुनीलकंठ ने प्रतिवाद किया कि वे चोर नहीं है, परंतु भिक्षा पात्र कहीं खो गया है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया, इन्होंने जो पात्र आपके पास थाती के रूप में रखा था वह आपसे गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि इन शिवयोगी की इच्छा के अनुसार आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस तालाब में डुबकी लगाएं और शपथ पूर्वक कहें कि आपने चोरी नहीं की है। वृद्ध तिरुनीलकंठ पत्नी के साथ साथ तालाब में उतरे। जल में डुबकी लगाने से पूर्व उन्होंने सारी सभा को पत्नी का हाथ न पकड़ने का मूल कारण रूप अपनी वैश्य गमन की घटना और पत्नी के शपथ वाक्य का प्रसंग सुनाकर स्पष्टीकरण किया। फिर एक बांस की छड़ी को पकड़े हुए वृद्ध दंपति ने जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकले तब तक दोनों का कायाकल्प हो गया था। दोनों नवीन यौवन की दीप्ति के से दमक रहे थे। यह उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ढूंढा तो वह वृद्ध शिवयोगी कहीं नजर नहीं आए। तभी उनको ज्ञात हुआ कि वे शिवयोगी नहीं बल्कि परंतु भगवान शिव स्वयं थे। तिरुनीलकंठ के समय में पुरुषों के का वैशाग्रह जाना एक साधारण सी घटना थी, पर तिरुनीलकंठ की पत्नी ने इसे अपने प्रेम और सेवा की अवहेलना समझा। तिरुनीलकंठ की शपथ लेकर कहा गया वाक्य वास्तव में पति के वैश्यगमन से हुए मानसिक आघात का द्योतक था। पत्नी की मर्यादा मानो खंडित हो गई हो। शिव द्वारा की गई इस लीला के मूल में तिरुनीलकंठ के पश्चाताप, त्याग भावना और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय के लिए शारीरिक मानसिक दंड की स्वीकृति थी। अपने पश्चाताप द्वारा उन्होंने जो साधना की उसे समाज में उजागर कर यह कथा भक्त के आध्यात्मिक पुनर्जन्म को वर्णन करती है, इसीलिए उनका नाम नायनमार में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
6: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
7: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
8: Hari Om. Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojvalangam Parasumrigavara Vetihastam Prashannam Padmasinam Samantat Stutamamaraganir Vyagrakrityam Vasanam Visvadhyam Visvabandhyam Nikhila Bhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Saktim Chatatputra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Shri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tanto Takam Vartika Karamanyan Asmad Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreya Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shantihi Shantihi Shantihi Om Om Om Adi Guru Bhagwan Shankaracharya Ji Dwara Virachit Sivananda Lahari इस स्तोत्र पर विचार कर रहे हैं. विचार के लिए छठा स्तोत्र है.

கும்போர் பஜ பரம சௌக்கியம் பிரஜ சுதி மனஸ்தே பாதாப்ஜே நிவசது வச்சஸ்தோத்ர பணிதௌ கரௌ சாப்யர்ச்சயாம் ஸ்ருதிரபி கதா கர்ணன விதௌ தவத்யானே புத்திர் நயன யுகலம் மூர்த்தி விபவே பரக்ரந்தான் கேர்வா பரமசிவ ஜானே பரமத யதா புத்தி சுக்தௌ ரஜதமிதி சாஸ்மா கா சாஸ்மனி மணிர் ஜலே பேஷ்டே சீரம் பவதி மிருகத்ருஷ்ணா சுஜலி சலிலம் ததா தேவோ ப்ராந்த்வா பஜதி பவதன்யம் ஜட ஜனோ மகாதேவேசம் த்வாம் மனசி ச நமத்வா பசுபதே கபீரே காசாரே விசதி விஜனே கோர விபினே விஷாலே சைலே ச ப்ரமதி குசுமார்த்தம் ஜடமதி சமர்ப்பேக்ய கிம் சேதஸ் சரசிஜமுமாநாத பவதே சுகேனாவஸ்தாதும் ஜனைஹ ந ஜானாதி கிமஹோ நரத்வம் தேவத்வம் நகவன மிருகத்வம் மசகதா பசுத்வம் கீடத்வம் பவது விஹகத்வாதி ஜனனம் சதா த்வத்பாதாப்ஜ ஸ்மரண பரமானந்த லஹரி விஹாராசக்தம் சேத் ஹ்ருதயமிஹ கிம் தேன வபுசா கடோ வா மிருத்பிண்டோ பியணுரபி ச தூமோக்னிரசல பட்டோ வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம் கோர சமனம் ப்ரிதாகண்டாக்ஷோபம் வஹசி தரசா தருக்க வச்சசா பதாம்போஜம் சம்போர் பஜ பரம சௌக்கியம் பிரஜ சுதி கடோ வா மிருத்பிண்டோ. பகவான் சங்கராச்சாரியஜி சிவபக்தி பிரதமிகதா தேத்தே பிரதானதா தேத்தே மகத்வ தேத்தே. பக்தி பாவ பிரதான் ஹை, தர்க்க பிரதான் நஹி, புத்தி பிரதான் நஹி, பக்தி ஹார்திக் ஹை, பௌத்திக் நஹி. அநேக தார்சனிக் ஜோ படே படே தார்சனிக் ஹுயே ஹை, ஹாலாக்கி உன் தார்சனிக்கோ மே சங்கராச்சாரிய ஜி பி குத் பி தார்சனிக் ஹை ஔர் மஹான் தார்சனிக் ஹை, சோட்டே மோட்டே தார்சனிக் நஹி ஹை. பஹுத் படே சிந்தக் ரஹே ஹை, உன்னோனே ஜோ சிந்தன் கி ஹை, விஸ்வகே படே படே மனிஷி ஆஜ அச்சம்பித் ஹோத்தே ஹை, ஆச்சரிய மானதே ஹை கி சோட்டே சே உமர் மே கியா சிந்தன் கியா ஹை உன்னோனே. ஜகத் கே பாரே மே, ஜீவ் கே பாரே மே, சன்சார் கே பாரே மே, பரமாத்மா கே பாரே மே, ஈஸ்வர் கே பாரே மே பஹுத் சிந்தன் கியா. ஐசே சிந்தன் கர்னே வாலே பஹுத் ஹுயே ஹை, படே ஆச்சாரி ஹுயே ஹை.
और आज भी हैं कि बहुत अपना जीवन पूरे शास्त्र चिंतन में ही व्यतीत करते हैं, अध्ययन और अध्यापन में ही सारा समय लगाते हैं। ऐसे विद्वान आज भी विद्यमान है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं ये लोग इस बात को नहीं जानते और केवल तार्किक और बौद्धिक बनते हैं और उसी में रह जाते हैं। परमात्मा की जो भक्ति है उस रहस्य को ये लोग नहीं जानते। परिणाम क्या होता है कि वो शब्द जाल में परे रहते हैं वो लोग। और खुद शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखी है, जो शब्द जाल में पड़ते हैं वे कभी भी फिर उस जंजाल से निकल नहीं सकते। ये शाब्दिक जंजाल शब्द जाल इतना बड़ा जाल है कि महाअरण्य है, जंगल है, घनघोर। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, शंकराचार्य जी की रचना है विवेक चूड़ामणि। वेदांत विचार करने के लिए बहुत उपयुक्त है विवेक चूड़ामणि, लेकिन कह देते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये पढ़ लो और ये भी कह रहे हैं कि इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, इससे निकलने के लिए पढ़ना हो तो पढ़ लो, इसमें फंसने के लिए नहीं पढ़ना। देखो, संसार परमात्मा की रचना है और हम भी परमात्मा की ही रचना है। अब रही बात, संसार किसके लिए बनाया परमात्मा ने? अपने लिए बनाया कि हमारे लिए बनाया है? परमात्मा ने इस जगत को बनाया तो अपने लिए बनाया कि हम लोगों के लिए बनाया है? इसका मतलब उसी ने अपने लिए बनाया, हम लोगों के लिए नहीं बनाया। तो फिर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम जबरदस्ती करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता माग्रध कस्य सिद्धनम्। ठीक है, उसने बनाया है तो उसी का ही है, मानते हुए इसका उपयोग करो। कहा तो यही जा रहा है, परमात्मा ने यह जगत बनाया है हम लोगों के उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं। उपभोग में और उपयोग में बड़ा अंतर है। वो उपभोग आसक्ति पूर्वक होता है, उपयोग में आसक्ति नहीं होती है। मैं आपको हमेशा इस दृष्टांत से समझाया करता हूं उपभोग और उपयोग में कितना अंतर है। मान लो कि पहले के जमाने में, आज तो आप लोग सब संपन्न हो गए, संभ्रांत हो गए, तो पहले के जमाने में गांव में रहने वाले सभी के पास सभी साधन नहीं होते थे। किसी के पास कुछ होता था, दूसरे के पास कुछ और होता था, तीसरे के पास कुछ और होता था। और जब कभी कोई फंक्शन का कार्यक्रम होता था तो कुछ और उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाते। अरे बाबा, यहां तक पहले के जमाने में हमने सुना है कि गांव में कोई संभ्रांत और संपन्न व्यक्ति ने कुछ ज्वेलरी बना ली, आभूषण बना के रख ली, तब गांव में किसी की लड़की की शादी करना हुआ तो वो तो ज्वेलरी खरीद नहीं सकता था अपना, लेकिन शादी के दिन भी कम से कम वधू को, उस दुल्हन को सजा तो ले। तो पहले के जमाने में ये चला करता था, तो लोग क्या करते थे, उसके यहां जाते थे, कुछ डिपॉजिट रख के वो सब गहना आभूषण ले आते थे, मांग के लाते थे। और शादी भर के लिए वह उसको श्रृंगार करते थे, सजाते थे, बहुत सुंदर दिखती थी। और उसके बाद शादी समाप्त हो गया, सारे आभूषण उसको वापस किया, डिपॉजिट लेके आ गए या उसको धन्यवाद दे दिया।
इसे बढ़कर और क्या डिपॉजिट हो सकता है? बोलो, जिसके साधन को तुम उपयोग करो उसके बाद यदि उसको थैंक्स कर दो तो उससे बढ़कर दूसरा डिपॉजिट हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम इतने निकम्मे हैं कि उसके वस्तु का खूब प्रयोग कर लेते हैं और न लौटाते हैं न थैंक्स करते हैं। शंकराचार्य जी वही कहने जा रहे हैं, कम से कम या तो लौटाओ है, सही रूप में तो लौटाना ही है क्योंकि उसकी वस्तु है। ये दृष्टांत किसका है? उपयोग का है। गांव में किसी एक के पास वस्तु है, उस वस्तु का दूसरे को आवश्यकता पड़ी, उपयोग के लिए उसने मांगा और उसने उपयोग कर ली और उसको लौटा दिया। उपयोग करने वाला व्यक्ति उपयोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं करता, करता है? हैं? उपयोग करने वाला व्यक्ति उपयुक्त पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आभूषण मेरी है, कहेगा वो? किसी नगर सेठ से उसने आभूषण अपनी कन्या के विवाह के लिए, कन्या को सजाने के लिए उसने मांग के लाए, चार दिन पांच दिन के लिए जो हो, और वो उपयोग कर रहा है, लेकिन वो कन्या का बाप या कन्या या कोई और उस आभूषण को ये मेरी है ये कहेगा वो? कभी भी स्वप्न में भी नहीं कहेगा। जागृत में तो कहने की बात छोड़ दो, है उसी की हा, लेकिन उपयोग पूरा कर रहा है। और जहां उपयोजन पूरा हुआ कि उसको वापस कर दिया, उसके बाद उसका क्या होगा, वो क्या कर रहा है जिसका वो वस्तु है, हैं? कहां रखा है, क्या कर रहा है, बेचा कि नहीं बेचा, उसी रूप में रखा है कि उसको तोड़ ताड़ दिया, कि उसके बारे में कुछ सोचता है उपयोगकर्ता व्यक्ति? हैं? नहीं सोचता। हम क्यों सोचते हैं फिर? हम क्यों सोचते हैं? इसका मतलब हम अब, जबकि उपभोग करने का अधिकार किसको है? परमात्मा को तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए परमात्मा उपभोग नहीं करेगा। और सामान्यतः उपभोग करने का अधिकार किसको है? जिसका जो वस्तु है उसी को है। और शास्त्र ने कहा, गुरुओं ने कहा, उपनिषदों ने कहा, सारा संसार और सांसारिक पदार्थ परमात्मा की है, उसका है। तब फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका है, काम चलाने के लिए उपयोग करो, उपयुक्त पदार्थ में आसक्ति मत करो, क्योंकि तुम हमेशा ख्याल रखो वो उसका है, उसका मालिक वो है। ये प्रयोजन पूरा होने के बाद मुझे इसको लौटाना है, ये होगा तो क्या होगी? ये दृष्टि होगी तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, यही है। लोग कहते हैं महाराज ये त्यक्ते ही ना भुंजी था, त्याग करो फिर भोग करो, ये क्या विरोधाभास शब्द है? त्याग करो तो फिर भोग क्या होगा, भोग करो तो फिर त्याग क्या होगा? फिर उपनिषद ईशावास्य उपनिषद में ये शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? तेन त्यक्ते ही ना भुंजी था, त्याग करो और भोग करो, विरोधाभास। भोग होगा तो त्याग नहीं होगा, त्याग होगा तो भोग नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि त्याग भावना से उपयोग करो, वहां भोग का अर्थ उपयोग है, तब मैं हमेशा दृष्टांत देकर समझाया करता हूं। किसी को मधुमेह हो गया, ये तो शरीर में मधुमेह तो अब तो आम चीज है, सभी को प्राय शरीर है तो मधुमेह है, है? शुगर तो है ही है। तो अब विचार करो, इस समय आप रोज आमरस खा रहे होंगे, हैं? आप उस आम का रस खा रहे होंगे, अभी तो और आम आ रहे हैं, खा रहे होंगे। जिसको मधुमेह
सीमा से ऊपर है। बाउंड्री लाइन की तो बात छोड़ दो, उस सीमा से अनियंत्रित है जिसका, वो क्या कभी आमरस खाएगा? तो क्या पहले मधुमेह नहीं था उस समय उसी तरह खाएगा कि डरता हुआ खाएगा? हा? खाएगा, घर में बना है, सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, खाएगा। लेकिन क्या वो आसक्ति पूर्वक खाएगा कि डरता हुआ खाएगा, बोलो? और हम संसार को आसक्ति पूर्वक भोग रहे हैं कि डरते हुए भोग रहे हैं, हैं? बोलो, हम संसार को किस तरह भोगते? मधुमेह वाला रोगी हैं, दूध पाक खाते समय डरता हुआ खाएगा कि आसक्ति से खाएगा? बोलो, डरता हुआ खाएगा। तो ये समझ लो कि वेदांत के दृष्टि से जितने भी मुमुक्षु हैं वो सब मधुमेह हैं, समझे कि नहीं? वेदांत की दृष्टि से जितने भी मुमुक्षु हैं वो सब क्या है? मधुमेह रोगी है। अब उनको संसार भोगना है तो कैसे भोगेगा? मुमुक्षु संसार को जब भोगेगा तो डरता हुआ भोगेगा, उस डरते हुए भोगने की दृष्टि को ही तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये कहीं इसमें मैं फंस न जाऊं, कहीं ज्यादा प्रयोग न कर लूं, कहीं ऐसा न हो कि कल जाकर मेरे लिए समस्या बन जाए, इस संसार की आसक्ति कहीं मेरे लिए समस्या न बन जाए, इस बात को हमेशा मुमुक्षु ध्यान रखता है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था हो गया। और भूभुक्

जन्मों के बाद मिला है। बोलो, सामान्य भी 84 लाख योनि के बाद मिला है ना, है? बोलो है कि नहीं। सामान्य भी आमरस बनाकर आमरस खाने का अवसर तो किसी पशु ने आमरस बनाकर खाता हुआ देखा? तुमने बनाकर दे दी तो खा लिया, वो बनाकर तो खाता हुआ देखा नहीं है। वो भी बड़ा लकी है कि जो कि तुम जैसे व्यक्ति मिल गए उसको आमरस बनाकर खिलाने वाले, वो बड़ा लकी है, नहीं तो वो क्या बना के खा पाएगा। और तुम्हें अब अपने आप बना के खा पाते हो कि नहीं, तो ये कब मिला है ये अवसर, ये चांस? बोलो, लोग तो यही कहते हैं ना, 84 लाख योनि उसके बाद मनुष्य योनि, तब जाकर वो हमको ट्रिक सीखने को मिला आमरस कैसे बनाया जाए, फिर बनाकर खाने का अवसर प्राप्त तो हुआ है, तो क्यों छोड़े? इसको क्या कहते हैं? आसक्ति। तो परमात्मा ने जगत बनाया किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसको तो जगत की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए जगत की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम कर्म फलों को भोगना है, और भोग्य पदार्थ नहीं होगा तो हम कर्म फलों को भोगकर कब समाप्त करेंगे? यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय व भोग्य साधन, भोगाश्रय, भोगाश्रय शरीर और भोग्य साधन विषय, ये दोनों बनाया परमात्मा ने। और ये दोनों जब हमको पहली बार मिला, यदि उस समय गलती न करते और ईशावास्य उपनिषद पढ़ लिए होते, समझे नहीं, पहली बार जब मिला परमात्मा की कृपा से, उस समय यदि गलती न किए होते और ईशावास्य पढ़ लिए होते और ईशावास्य के कहे अनुसार तेन त्यक्तेन भुंजी था किया होता, डरते हुए आमरस पिया होता, तो ये पुनर्जन्म का सुगर न बढ़ता। ये पुनर्जन्म क्यों हुआ बोलो? पहली बार जो गलती हुई, किसी ने कहा है ना, मिट्टी के खिलौने फना होने से डरते हैं, देख लो, जहर पीते हैं पर दवा से डरते हैं, जीने वाले जहां से डरते हैं, जीने वाले संसार में जीना चाहते हैं, जी भी रहे हैं, जीने वाले जहां से डरते हैं और जिस संसार में वो जी रहे हैं उसी से डर भी रहे हैं। और यदि तुमको डर लग रही हो तो तुम दवा खा लो, तो बोले दवा से डरते हैं, जीने वाले जहां से डरते हैं, जहर पीते हैं पर दवा से डरते हैं। बड़ा उल्टा है, जहर पीकर कहीं जीने की आशा रख सकते हैं? कोई पी रहा है जहर और कहता है मैं जीना चाहता हूं, और पिया जा रहा है जहर, और किसी ने कहा कि यदि तुमको जीने की इच्छा है तो दवा पी लो, बोले दवा से डरते हैं, फिर तुम किससे डरते हो? किसका मोबाइल बज रहा है? हाँ, तो किसी ने पूछा तुम किससे डरते हो, तो शायर लिखता है हमसे अगर पूछे कि कोई हमसे यदि पूछे कि तुम किससे डरते हो, तो शायर कहता है कि हम ना जहां से डरते हैं, ना जहर से डरते हैं, ना दवा से डरते हैं, हमसे अगर पूछे कि कोई, तो जनाब हम तो अपनी ही खता से डरते हैं, न दवा से डरते हैं, न जहर से डरते हैं। खता क्या है भाई? हाँ, क्यों डरते हो तुम अपनी खता से भाई? तो आगे कहता है, न जाने कब की थी गलती हमसे, न जाने कब की थी गलती हमने। देखो, जीव अनादि है, जगत भी अनादि है।

0: जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है, कब कैसे इसका कोई उत्तर नहीं है, अनादि है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले परमात्मा ने जब जीवात्मा को शरीर आदि के निर्माण की और उसमें प्रतिबिंबित होकर जीव भाव खड़ा हुआ ईश्वर सृष्टि के क्रम में, जब शरीर आदि स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर का निर्माण किया और उसमें प्रतिबिंबित होकर जीव भाव खड़ा हुआ, उस जीव ने सबसे पहले गलती क्या कर ली, मैं बिंबाधीन हूं, मैं बिंबाधीन हूं, बिंबाश्रित हूं, मैं उपाध्याधीन नहीं हूं, उपाध्याश्रित नहीं हूं, ये निश्चय कर लिया होता तो फिर उसको ये खता ये परिस्थिति भोगना न पड़ता। आप लोग ध्यान देकर सुनना, ये थोड़ा तत्व चिंतन का भी प्रसंग आ रहा है। लेकिन उसने गलती क्या की, प्रतिबिंब का अस्तित्व बिंब पर आश्रित है, लेकिन वो प्रतिबिंब ने अपने आप को प्रतिबिंब आश्रित न मानकर उपाध्याश्रित मान लिया। प्रतिबिंब के आश्रित होना चाहिए था, मैं प्रतिबिंब से अभिन्न हूं ये कहना चाहिए था, उल्टा क्या कहने लगा, मैं उपाधि के आश्रित हूं, उपाधि मेरा स्वरूप है, यदि उपाधि न होता तो मैं न होता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरा आशय को, मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं। तुम सबसे पहली बार दर्पण के आगे, मिरर के आगे खड़े हो गए, आईने के आगे खड़े हो गए, तो सबसे पहली बार क्या हुआ आईने के अंदर है, तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारे शरीर का प्रतिबिंब, तुम्हारा तो कोई प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है, तुम्हारा आईने में क्या प्रतिबिंब पड़ेगा, हां तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ेगा, तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है हृदय में और शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है आईने में, इतना समझ रहे हो ना। तुम सबसे पहले आईने के सामने खड़े हुए तो आईने के अंदर तुमने क्या देख ली कि एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व खड़ा है, देख लिया कि नहीं, पूरा का पूरा व्यक्ति खड़ा है। अब मान लो हाँ, वो जो आईने के अंदर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसने ये सोचने लग गया, वो ये सोचने लग गया, मान लो तुम सोच सकते हो तो वो नहीं सोच सकता है, तुम प्रतिबिंब होकर सोच सकते हो, वो प्रतिबिंब होकर नहीं सोच सकता है, बोलो, मान लो, बस क्या अर्ज है मान लेने में, समझने के लिए तो मानना है ना। मान लो कि उसने प्रतिबिंब ने ये निश्चय कर लिया, ये सामने जो खड़ा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को स्वतंत्र रूप में या प्रतीत कराने के लिए खड़ा करने वाला तो ये आयना है, दर्पण है, यदि दर्पण न होता तो मैं यहां उपस्थित न हो पाता, किसने कहा, ध्यान से सुनना हो, किसने कहा, प्रतिबिंब ने ये कहा कि यदि ये दर्पण न होता तो मेरा अस्तित्व ही न होता, इसीलिए मेरा अस्तित्व ही ये दर्पण है, और बिंब को तो वो वास्ता ही करना छोड़ दिया, जबकि हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, बिंब है, बिंब नहीं होता तो प्रतिबिंब क्या पड़ता है, बिंब हो तो वो प्रतिबिंब के लिए केवल उसके अस्तित्व के लिए केवल दर्पण की आवश्यकता नहीं है, घी भी पर्याप्त है, पानी भी पर्याप्त है, तेल भी पर्याप्त है कि नहीं, बोलो, अनेक विकल्प हैं प्रतिबिंब को प्रतीत होने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए उपाधि तो अनेक हैं, लेकिन मूल बिंब तो एक ही है ना, बिंब ही नहीं रहेगा तो न पानी में प्रतिबिंब पड़ेगा, न दर्पण में पड़ेगा, न घी में, न तेल में पड़ेगा। उसको ये सोचना चाहिए ये दर्पण फूट भी जाए तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं बिंबाश्रित हूं, मेरे स्वरूप में बिंब में कोई फर्क नहीं आएगा, ये निश्चय करना था। लेकिन मूर्खता करने के लिए तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, पड़ती है। शादी करना हो बेटी की तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, मूर्खता करनी हो तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिष के यहां जाना पड़ता है मूर्खता करने के लिए। कहीं भी किसी भी निमित्त से मूर्खता कर सकते हो है? तो उसने क्या मूर्खता कर दी, बिंब की तरफ से तो दृष्टि हटा दिया, उपाधि जिस दर्पण में वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हुआ था वो उपाधि को ही अपना स्वरूप मान लिया कि यही मैं हूं, इसी के वजह से मेरा अस्तित्व है, ये यदि नष्ट हो गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सबसे पहले उस प्रतिबिंब ने क्या किया, खता की, गलती की, और तुम हमने भी यही किया सबसे पहले।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: उस धीर नामक भील अपने साथियों के साथ घूमते घूमते बहुत दूर निकल पड़ा। ऐसे जगह गया जहां पर कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। परेशान हो गया, बेहोश पड़ गया। उसका साथी उसको साहस दिया, तुम यहीं बैठो, मैं पानी ढूंढ के आता हूं। वहां से वह 1.5 किलोमीटर ऊपर गया तो एक झरना बह रहा था, और झरने के बाद बहुत प्राचीन एक शिवलिंग था। आकर अपने साथी को बताया, उसको उठा के वहां ले गया, झरने का पानी पिया, बैठा, उससे बहुत आनंद आया। सामने देखा एक शिवलिंग है, शिव का पिंड है। वहां जो है पूछा कि इसकी पूजा कैसे होती है, तो उसके साथी ने कहा कि मैं एक बार यहां भटकते भटकते पहुंचा था तो कोई आदमी अपने कंधे पर उसकी धागा लटक रही थी, और वह एक घड़े में जल लाया और जल ला करके इस पर चढ़ा दिया। इसके बाद नया नया बिल पत्र रखा, फूल रखा, और अपने हाथ से भोजन कराया, इसके बाद आरती उतार के चला गया। ऐसा सुनने के बाद वह धीर नामक भील भगवान शंकर की पूजा में वैसे ही लग गया, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसने सोचा कि मैं पानी कैसे लाऊं। तो उस भील ने अपने मुख में झरने का पानी भर लिया, और अब मतलब भगवान को भोग क्या लगाए, तो भील था इसलिए जंगल से वह जा करके खरगोश को मार के लाता था, उसको अग्नि में पका करके दाहिने हाथ में पकड़ लिया। परंतु निर्माल्य को कैसे हटाए, तो उसने कहा कि पैर से निर्माल्य हटाए। तो धीर नामक भील ने मुख में तो पानी भरा और अपने पैर से निर्माल्य हटाता, और सिर में अपने फूल की गुच्छा लगा लेता था। कोई बर्तन थे नहीं फूल रखने के लिए, मुख से पानी छोड़ता, सिर को हिला देता तो फूल गिर जाते। इसके बाद वह खरगोश के पके हुए मांस को खिलाता। इस प्रकार से 6 दिन तक पूजा किया। भगवान शंकर उसके शुद्ध भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर उसके उस मांस को हर दिन ग्रहण करते थे। पुजारी को बहुत क्रोध हुआ कि मैं तो हर दिन आता हूं, सफाई करता हूं, अच्छी प्रकार पूजा करता हूं, पर न जाने कौन सा ऐसा दुष्ट है कि हमारे जाने के बाद वह अशुद्ध कर देता है। भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि आप सर्वज्ञ हैं, आप उसको नष्ट कर दें जो हमारे पूजा में बाधा उपस्थित करता है, जो आपके स्थान को अपवित्र करता है। भगवान शंकर ने पुजारी को सपना दिया, सपने में समझाया तुझसे भी वह श्रेष्ठ पुजारी है, वह मेरा प्रिय भक्त है, तुझे देखना हो तो कल तू झाड़ी में छिप कर देखना वह रात्रि को कैसे पूजा करता है। वह पुजारी ऐसा ही किया, रात्रि को छिप गया झाड़ी में और देखता है कि भील आता है और अपने पैरों से निर्माल्य को, जो पुजारी ने निर्माल्य चढ़ाया था, उस निर्माल्य को पैरों से हटाया और अपने मुख में जो जल भरा था उसको भगवान शंकर के पिंड पर छोड़ दिया और सिर को हिला करके पुष्प चढ़ा दिया, जो सिर में लगाए हुए थे फूल गिर जाते। इसके बाद वह पके पकाए उस खरगोश के मांस को अपने हाथों से भगवान को खिलाता था। पर उस दिन जब भगवान शंकर को खरगोश का मांस खिलाने लगा तो भगवान शंकर मुख ही न खोले और रोने लगा कि आपने जो है इतने दिनों तक जो है हमारे इस नैवेद्य को तो ग्रहण किया, आज आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आज मैं बहुत थक गया हूं, दूर जंगल में चला गया और बड़े मुश्किल से खरगोश मिला, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, हट करके बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि भगवान शंकर के बाएं आंख से रक्त की धारा बहने लगी। बहुत दुखी हो गया, उसने कहा कि रक्त धारा कैसे बह रही है, हैं किसी ने चोट पहुंचा दिया, कोई रोग हो गया, वह रोने लगा। अंत में कहा कि कोई औषधि करनी चाहिए, अपने साथी को भेजा और जंगल से एक जड़ी बूटी लाया, उसके रस को निचोड़ करके आंख पर लगाया, पर लगाने से और रक्त धारा तेज हो गई। उसने सोचा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो उसने खुद अपने बाण से अपने आंख को निकालकर लगा दिया। लगाते ही रक्त धारा बंद हो गई, बहुत खुश हुआ कि भगवान शंकर की आंख ठीक हो गई, मेरी उपासना सफल है। पर इतने में क्या देखता है कि दाहिने नेत्र से रक्त धारा प्रवाहित हो गई। उसने सोचा कि इसमें भी लगता है कोई बीमारी है, परंतु दाहिने आंख को लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे। उसने विचार करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे से, जहां से भगवान शंकर की आंख से धारा प्रवाहित हो रही थी, वहां रख लिया चिन्ह के लिए, क्योंकि एक आंख तो मेरी चली गई, दूसरी चली जाएगी तो मैं कैसे आंख लगाऊंगा। ऐसा सोच करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान की आंख के सामने रखी और उस आंख को जैसे निकालने जा रहा था, साक्षात भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। पुजारी भी आया और पुजारी ने भगवान से क्षमा याचना किया, क्योंकि पुजारी ने भगवान से कहा था कि आप इस भक्त का सर्वनाश कर दो जो आपके स्थान को पवित्र करता है। तो देखो, भगवान भक्ति प्रिय है, उनके लिए न कुछ खाद्य है न खाद्य है, वह तो हमारी भावना को देखते हैं। इसी कथानक को भगवान शंकराचार्य ने श्लोक बद्ध भी किया है, ये तमिल भाषा में अंकित है, शिव भक्त चरित्रम नामक संस्कृत में पुस्तक है, उसका अनुवाद तमिल में है, हिंदी में तो नहीं है। तो भगवान शंकर संसार के भय को भंग करने वाले हैं, ये भांग धतूरा तो ठीक है श्रद्धा से निवेदन करें तो, पर उसके व्यसनी नहीं। अपि श्लाघ्य, यह जो विकार है, विकार मतलब हलाहल विष का, वह भी भगवान के शोभा को बढ़ा रहा है। यह तो है, हमने आपको शब्दार्थ बदलाया, अब देख लीजिए इसके वाक्यार्थ को। अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवा सुर कृपा, अकांड का अर्थ अश्रम में प्रलय होना, समय से कोई काम हो तो किसी को बेचैनी नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। जैसे कि वर्षा समय से हो तो सभी प्रसन्न होते हैं, बरसात के दिन में भी यदि फसल न हो तो लोग क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मतलब काल तो तब भी है, परंतु बरसात के दिनों में हरा भरा होना चाहिए, फसल होनी चाहिए, वैसा न होने से कहते हैं कि अकाल पड़ गया। जेठ के महीने में चारों तरफ सूखा होता है पर कोई नहीं कहता कि अकाल पड़ गया, क्योंकि वह जेठ का महीना सूखा के लिए ही है। ऐसे जिस समय प्रलय होना चाहिए उस समय प्रलय हो तब तो यह उचित है, परंतु सृष्टि काल में अचानक जो है ब्रह्मांड के क्षय होने का समय उपस्थित हो गया। जैसे दिन रात प्रातः काल से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक सूर्य की रोशनी रहती है, 6 बजे के बाद पुनः सूर्यास्त हो जाता है, तो किसी को हैरानी नहीं होती है। पर किसी दिन यदि 12 बजे ही अंधेरा छा जाए तो लोग क्या कहते हैं, आज सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य में ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण के दिन आप क्या करते हैं सबको पता है, उस समय सब कुछ छोड़ करके पवित्र नदी में स्नान करते हैं। जितनी भी नदियां होती हैं, तालाब होते, उस समय उनको गंगा के समान माना गया है। तुरंत स्नान करके ग्रहण के समय आप भगवान का जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके पूर्व 12 घंटे का उपवास भी होता है। हर दिन सूर्यास्त हो रहा था 6 बजे तो आपने कुछ नहीं मनाया, कोई हैरानी नहीं हुई, परंतु एक दिन अचानक जो है 12 बजे सूर्यास्त हो गया, 2-4 घंटे के लिए क्यों न हो, तो ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मा जी ने घोषणा किया था कि चाहे देवता हो या असुर, यदि दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, मंथन करने से अमृत निकलेगा और अमृत पान के बाद सभी अमर हो जाएंगे। इस ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर दोनों ने आपस में मैत्री की, हालांकि मैत्री संभव नहीं थी, परंतु स्वार्थ के कारण देवताओं ने बलि के पास जाकर प्रार्थना किया कि अकेले आप भी समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें और जो चीज प्राप्त होगी उसको आपस में बंटवारा कर लेंगे। बलि भी तैयार हो गए, देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किए। मंदराचल को तो मथानी बनाया, वासुकी मथाने की रस्सी बन गई। मंथन प्रारंभ हो गया, पर मंथन के बाद सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलते ही सभी बहुत परेशान हुए, सभी बेचैन हो गए, मूर्छित हो गए। जो कुछ देवता बचे वो भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु ने कहा कि इस हलाहल विष का संहार केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को लेकर कैलाश जाते हैं, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप संहार के देवता हैं, आप इस हलाहल का उपसंहार कर लीजिए, अन्यथा अकांड ब्रह्मांड क्षय हो जाएगा, असमय में ब्रह्मांड का नाश होगा, अभी ब्रह्मांड के प्रलय का समय नहीं आया है। भगवान शंकर बाजू में बैठी थी पार्वती जी, उधर इशारा किए। पार्वती जी ने कहा ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थ आया तब तो सीधे कैलाश आए, और कैलाश आने के बाद आपको कहते कि बीज पी लो, यदि आप बीज पी लेंगे तो देवता असुर तो बच जाएंगे, ब्रह्मांड बच जाएगा, पर मैं तो विधवा हो जाऊंगी। इसलिए पार्वती ने सीधा मना कर दिया, मत पीजिए, इशारा से मना कर दिया। भगवान विष्णु कह रहे महाराज आप पी लीजिए, कृपा कीजिए, जल्दी कीजिए, लोक में त्राही त्राही मचा हुआ है, अब विलंब मत कीजिए।